सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट, और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों, हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति हैं। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट, और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे, और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा?
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करो हो अमारे आसे कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथी। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम हूँ कहवाए है ने आनो हूँ महत्व है। तो अना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक की घना खनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बात है। तो भाई बोनो आप हमारे रहसू आपू रेडियो आपड़ी बात है वाक रेडियो 90.8 एफएम माते।

0: માઇન્ડ બોનું ગીત તો આશું પૂર્ણ અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણીમાન સ્વાગત કરું હું અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે આપને ગીતે કે પહેલા અમે વિષય ઉતાર્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે સામુદાયિક વન અધિકાર અધિનિયમ હું કહેવાય ને આનું હું મહત્વ હૈ તો અણા વિષય માટે જાણકારી અલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મનીષજી સર. તો સપ્તાહ કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है सामुदायिक वन अधिकार को लेकर. आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि ये वन अधिकार क्या है और इनका हमारे समुदाय साथियों के जीवन में क्या महत्व है.
1: बिल्कुल, सामुदायिक वन अधिकार की जब हम बात करते हैं तो सामुदायिक वन अधिकार जो हमें मिलता है वो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये मिलता है.
0: बिल्कुल,
1: इसके अंतर्गत दो तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं. तो पहला इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि वन अधिकार अधिनियम जो बनाया गया तो जंगल से संबंधित जो कानून बने थे पुराने समय में तो इसको बनाने के पीछे सरकार की मंशा यही थी कि परंपरागत रूप से जो आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजातियां या अन्य परंपरागत निवासी जो वहां पे निवास तो कर रहे हैं पर उनको उनके हक मिल नहीं पाए या जिस पे उनका हक है वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है
0: जी जी.
1: तो इसी के लिए जो है इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी.
0: बिल्कुल.
1: तो इसका यदि पूरा नाम हम बताना चाहेंगे तो इसका नाम है अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत निवासियों यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है. क्योंकि ये 2005 में पास हुआ और 2006 में ये पूरे भारत में राज्यों में समान रूप से लागू कर दिया गया.
0: जी जी बिल्कुल.
1: इसी कारण इसको वन अधिकार अधिनियम छोटे रूप में 2006 बोलते हैं. तो ये अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था जैसा कि हमने बात की ताकि आदिवासी समुदायों और अन्य परंपरागत निवासियों को उनके पारंपरिक वन भूमि
0: जी जी.
1: और संसाधनों पर अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी जा सके. तो अब इसमें भी

0: हम जैसे देख रहे हैं कि वन भूमि और संसाधन,
1: बिल्कुल,
0: तो यहाँ पे दो चीजें ये हैं कि एक इसमें जो है व्यक्तिगत रूप से भी आपको वन भूमि पे पट्टे दिए जाते हैं जिससे आप अपनी आजीविका उपार्जन में उपयोग कर सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और दूसरा होता है संसाधनों पर अधिकार। तो संसाधनों के अधिकार की जब हम बात करते हैं तब यहाँ सामुदायिक वन अधिकार की बात आती है। तो आपके क्षेत्र का जो पूरा जंगल है आपके गांव में या पंचायत की सीमा में आने वाला, और वो भी पारंपरिक,
1: जी जी,
0: हो सकता है अब उनकी सीमाएं बदली हों, तो कानून कहता है कि पारंपरिक रूप से जो भी जंगल का हिस्सा उनके रीति रिवाज मान्यताओं या धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता था उसकी जो पारंपरिक सीमा है वो उतनी वन भूमि का अधिकार उनको पाने का हक है और वो कानूनी रूप से उनको मिलेगी, तो इसकी एक प्रक्रिया होगी।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो अब यही हम जानना चाहेंगे कि सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से इसमें दस्तावेज और अन्य चीजों का प्रयोग किया जाता है।
0: देखिए, सबसे पहले हम यदि पंचायती राज अधिनियम की भी बात करें तो ग्राम सभा को जो है सबसे बड़ा माना गया है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में ये कहा है कि राज्यसभा और विधानसभा से भी ऊपर ग्राम सभा है।
1: बिल्कुल,
0: तो ग्राम के सर्वोत्तम हित में लिए गए निर्णय ग्राम सभा की ओर से वो मान्य होंगे, और यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने उनके विरुद्ध गलती से कोई नियम या कानून बना दिए गए हैं तो ग्राम सभा के निर्णय को वो कानून काट नहीं सकते।
1: बिल्कुल,
0: तो ग्राम सभा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो ग्राम सभा से ही होती है।
1: जी जी,
0: तो सबसे पहले जो है ग्राम सभा का आयोजन होता है, और आयोजन में ये तय होता है कि सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करने की मुख्य प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ग्राम सभा सामुदायिक वन अधिकार का दावा देने के लिए एक समिति का गठन करती है।
1: बिल्कुल,
0: जिसे वन अधिकार समिति कहते हैं, जिसमें 10 से 15 सदस्य होते हैं, उसमें कम से कम एक तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो समिति दावा प्रपत्र अनुसार सभी दस्तावेज एकत्र कर जो ग्राम सभा है वो सामुदायिक वन अधिकार दावा जो है तैयार करेगी। इसके बाद बात आती है कि दस्तावेज इसमें क्या क्या लगेंगे। तो दस्तावेजों में एक तो होता है पारंपरिक वन उपयोग का नक्शा, यानी कि वो नजरी नक्शा हो सकता है,
1: जी जी,
0: जो वहाँ के बुजुर्ग बोलते हैं कि ये यहाँ तक हमारा था, यहाँ हमारा मंदिर था, या यहाँ पुराने समय में कोई तालाब था, तो ये हमारे गांव की सीमा में आता था। हो सकता है गांव बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से अब उनको अलग गांव के नाम से पुकारा जाने लगा हो, तो वो नजरी नक्शा होता है। एक और नक्शा होता है जिसको जीपीएस मैप बोलते हैं, और तीसरा नक्शा होता है जो वर्तमान में वन विभाग के पास में उपलब्ध होगा कि उनके अनुसार उस गांव की सीमा का जंगल कहाँ तक है। तो पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पारंपरिक वन उपयोग का नक्शा जो उनके बुजुर्गों के अनुसार नजरी नक्शा होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद वन उत्पाद संग्रह, तो जंगल में जो जो मिलने वाले वन उत्पाद हैं, है ना, लकड़ी को छोड़ के, लकड़ी का भी जो है एक अपना कानून है जिसमें निस्तार का हक जो है उस ग्रामवासियों को जो है दिया जाता है, तो उसके लिए अलग से जो है नियम है। तो उत्पाद संग्रह की बात हो गई, जैसे टिमरू हुआ, महुआ हुआ, बेहड़ा हुआ, या अन्य और कोई उत्पाद होंगे जैसे गोंद होता है, तेंदू पत्ता होता है, तो इस तरह के वन्य उत्पाद। धार्मिक स्थलों, जल स्रोतों के उपयोग का विवरण, तो इन सभी का जो है विवरण उसमें दर्ज करना है। इसी के साथ इसमें स्थानीय लोगों के जो है हस्ताक्षर, कुछ हलफनामे यानी कि बुजुर्गों के कथन, और उनके फोटो लगेंगे जो ये बताते हैं कि पारंपरिक रूप से उनके वन उपयोग में ये चीजें थी। हो सकता है उसमें से वर्तमान में कुछ कम हो गई हों।
1: बिल्कुल,
0: और पारंपरिक प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाण कि किस तरह से वो अपने जंगल का प्रबंधन करते थे जिससे वो उनका उपयोग उपभोग दोनों करने के बावजूद भी जंगलों को किसी तरह से जो है नुकसान नहीं होता था और वो उसी तरह उतने ही सुंदर रूप में खड़े रहते थे।
1: बिल्कुल सही।
0: जब हमने ग्राम सभा का गठन कर लिया, हमने समिति का निर्माण कर लिया, हमने दावा तैयार कर लिया, दस्तावेजों का संकलन कर लिया, तो अब दावा प्रस्तुत करने की बारी आती है। तो तैयार दावा ग्राम सभा में चर्चा कर पारित किया जाता है, यानी कि उस गांव के सभी लोग जो ग्राम सभा में उपस्थित हैं वो इन सारी चीजों को एक बार देखते हैं, उसकी सीमाओं को देखते हैं कि कहीं इसमें कोई जगह छूट तो नहीं गई या कोई जगह हमने ज्यादा तो नहीं ले ली।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसी कोई स्थिति होती है तो फिर जो पड़ोसी गांव हैं उनकी समितियों के साथ या उनके ग्राम सभा के साथ में बैठ के उस पर चर्चा की जाती है। तो ये ग्राम सभा में पारित हो गया, इसके बाद में जो है ग्राम सभा इसको अनुमोदित करके उपखंड स्तरीय समिति होती है उसको भेजती है। उपखंड स्तरीय समिति के द्वारा जो है इसकी जांच होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो वन अधिकार समिति जो होती है उपखंड स्तरीय, इसमें राजस्व और वन विभाग जो होते हैं वो इनकी मदद करती है भौतिक या जमीनी सत्यापन के लिए।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हो सकता है आपने जब दावा किया तब वनों की सीमा कहीं और थी, राजस्व की सीमा कहीं और थी, तो इन दोनों विभाग के अधिकारी भी उनकी मदद के लिए उस समिति के साथ में होते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: यदि आवश्यक हो तो दावेदारों से और जानकारी भी मांगी जा सकती है। यानी कि जांच के दौरान उपखंड स्तरीय समिति को लगता है कि आपके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं ये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वो पर्याप्त साक्ष्य के लिए आपको एक सूची बना के देंगे, उस सूची के अनुसार वो साक्ष्य हमको वापिस उपलब्ध कराना होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब उपखंड स्तरीय समिति उस दावे का अनुमोदन कर देती है तो उसको जिला स्तरीय समिति को भेज दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अनुमोदन के लिए। अब जिला स्तरीय समिति का इस पे निर्णय होता है, तो जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर जो है पदेन कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं और जिला समिति का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। तो स्वीकृत दावों के लिए अधिकार पत्र जारी कर दिया जाता है, यानी कि उन संसाधनों पे उस गांव की ग्राम सभा को उसका अधिकार दे दिया जाता है।
1: जी जी।
0: जिसे टाइटल डीड बोलते हैं। ये अधिकार सामूहिक रूप से ग्राम सभा को दिया जाता है।
1: जी हाँ।
0: इसके बाद जो ग्राम सभा है वो तय करती है कि किस तरह से जो है उनको इनका प्रबंधन करना है, संरक्षण करना है, पुनरुद्धार करना है, ये सारा जो है वो ग्राम सभा तय कर सकती है और उनके अनुसार वो उसके सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
1: बिल्कुल।
0: तो वन अधिकार पत्र का वितरण और प्रबंधन यहाँ से जो है वितरण के बाद शुरू हो जाता है। तो ग्राम सभा सामुदायिक वन अधिकार मिलने के बाद उनके प्रबंधन में पारंपरिक और सामूहिक तरीकों से अपने निर्णय लेगी।
1: बिल्कुल सर।
0: यदि हम देखें इसमें कि क्या चीजें हो सकती हैं, तो जैसे लघु वनोपज का उपयोग या तो वो खुद करें या खुद करें और ज्यादा होने पे उसका विक्रय करें।
1: बिल्कुल।
0: जल स्रोत हैं, जल स्रोतों से भी कई प्रकार के जो है आजीविका के संसाधन उपलब्ध होते हैं या जल स्रोतों का विकास भी इसमें शामिल हो सकता है। कुछ चारागाहों और धार्मिक स्थलों का भी हो सकता है कि वो निर्माण करें या उनका पुनरुद्धार करें। वनों का संरक्षण और पुनरुद्धार इसमें स्वाभाविक रूप से शामिल है। और इसके अलावा उनको जो अपने गांव के और उस जंगल के विकास के लिए जरूरी लगता है उस तरह के वो निर्णय ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो अंत में यदि हम बात करें कि वन अधिकार अधिनियम संबंधित जो है समितियां, तो एक हो गई आपकी ग्राम सभा।
1: जी हाँ।
0: जो पूरे गांव के लिए निर्णायक होती है। उसके बाद पंचायत स्तर पे होती है वन अधिकार समिति। इसके बाद उपखंड स्तरीय समिति जिसमें तहसील या ब्लॉक पे हो सकती है, और अंत में होती है जिला स्तरीय समिति।
1: बिल्कुल।
0: इन समितियों के ऊपर भी दो समितियां हैं जहां आवश्यकता होने पे आप अपनी अपील कर सकते हैं, तो वो राज्य स्तर पे होती है और एक केंद्र स्तर पे होती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि सामुदायिक वन अधिकार क्या है और किस तरीके से इसमें हमें दावा प्रारंभ करना होता है, दस्तावेज भेजने होते हैं, फिर दावे को प्रस्तुत करना होता है और किस तरीके से अलग अलग समितियां बनाई गई हैं वो इन पर निर्णय लेती हैं और किस तरीके से हमारे जो भाई बहन हैं वो इसका पारंपरिक या सामूहिक रूप से संरक्षण कर सकते हैं यानी कि प्रबंधन कर सकते हैं। यहीं सर आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए हम अगर बात करें वन अधिकार की तो हमारे जो भी क्षेत्र हैं जो आदिवासी बहुल हैं और ये पूरी तरह से जो है वनों पे निर्भर है।
1: बिल्कुल
0: आज की समय में जो आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं वो जब नहीं थी तो हमारे आदिवासी समुदाय में वनों का बहुत महत्व था। यानी कि यदि आजीविका की बात करें तो एक वर्षा आधारित खेती होती थी जिसके बाद उनके पूरे साल की आजीविका में वन बड़ा महत्व रखते थे।
1: बिल्कुल
0: वो उनको उनके पशुधन के लिए भी जो है भोजन उपलब्ध कराते थे, उनके लिए भी भोजन उपलब्ध कराते थे और अनेक तरह की जड़ी बूटियां, अनेक तरह की लकड़ियां जो विशेष रूप से विशेष अवसरों पे और कई विशेष चीजों में प्रयोग की जाती है।
1: जी जी।
0: इसी तरह से जो है वहाँ पे पाए जाने वाले पशु पक्षी वो उनकी आजीविका में जो है बड़ा सहयोग प्रदान करते थे। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो 70% जो आजीविका का संसाधन आदिवासी समुदाय का था और आज भी अगर वो होंगे तो वापिस वो उसकी तरफ लौटेंगे तो 70% उनका जीवन जो है वो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर करता है, जंगलों पर निर्भर करता है। तो वन अधिकार अधिनियम जब आया तो हम बोल सकते हैं कि ये सामुदायिक सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपनी खोई हुई चीजों को वापिस पा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: सामुदायिक वन अधिकार से पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन जो है वापिस तुलनात्मक रूप से जो है संतुलन में लाना हम संभव होता देख सकते हैं। और ये बात बिल्कुल नई नहीं है कि समुदाय की भागीदारी से ही विकास संभव है।
1: बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया है तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जिनकी बहन बोनो अवड़े आपने वैसे मनीष जी जुड़े तक हता ने एने आपड़ा ने घणी असल तरीका तक की घणा कानी वाते बताड़ी है। आशा करा हो कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपड़े अनस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पर साथे पहले हमरी लायक और कितने मोरे पड़ा सूटा।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि

0: डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागल रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम में बातचीत का विषय है कि बच्चों में हम कैसे जगाएं मदद करने की नजरिए को।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि कहा जाता है कि बच्चे देश और दुनिया का भविष्य होते हैं और आने वाली नई पीढ़ी ही राष्ट्र और समाज के भविष्य का निर्धारण करती है।
0: जी बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बच्चे बताने से ज्यादा आसपास के माहौल को देखकर सीखते हैं, साथ ही उन्हें बचपन से ही सही तरीके से समझाने की जरूरत होती है।
0: जी हाँ,
1: बचपन से ही उनमें त्याग, ममता, प्यार, अनुशासन और प्रगति की शिक्षा देनी होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: साथ ही उन्हें ये भी सिखाना पड़ता है कि एक दूसरे की मदद करके ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि त्याग, सद्भावना, ममता जैसे गुण एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करते हैं, जो न सिर्फ उनके बल्कि देश के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: ऐसे में दोस्तों ये बेहद जरूरी है कि बच्चों को सही संस्कार और शिक्षा दी जाए, उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व पाने में मदद की जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो आज कार्यक्रम में कशिश हम यही जानेंगे कि कैसे हम हमारे बच्चों के अंदर कुछ ऐसे गुण डालें जिससे उनके जीवन में उन्हें ढेर सारे फायदे हो पाए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो उन्हीं फायदों को लेकर आज हम दोस्तों से कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी भी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्त को गीत सुनवाए हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें बच्चों में जगानी होगी मदद करने के नजरिए को।
1: जी बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, अगर आपको बताएं तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को अच्छी बातें सिखानी होंगी। यानी कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को हर मानवीय गुण सिखाने की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने मन, वचन और कर्म से दूसरों की मदद करना। और हमेशा यह देखा भी गया है अंजलि जी कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कम तनाव रहता है।
1: जी हाँ
0: मानसिक शांति और आनंद का वे लोग अनुभव करते हैं। श्रोताओं, वे अपने स्वयं अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और उनका जो जीवन है वो भी सुखमय तरीके से बीतता है।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि हमें बच्चों को उन लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है जो हर समय उनके साथ रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जिनके साथ बहुत गहरा उनका लगाव होता है, जैसे घर में बूढ़ी दादी को बीमारी की हालत में बच्चे के हाथ से दवा खिलाई जा सकती है।
0: जी हाँ।
1: जिससे वह दूसरों की मदद करना सीखेगा और बड़ों का सम्मान करना भी सीखेगा।
0: बिल्कुल। साथ ही हमें बच्चे को चीजों को बांटना भी सिखाना चाहिए। जब वे अपने बड़ों को ऐसा करते हुए देखते हैं अंजलि जी, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में इस आदत का विकास हो सकता है।
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, अगर वो आपको लालच करते हुए देखेगा तो ये आदत वो कभी नहीं सीख पाएगा। आज के दौर के छोटे बच्चों को देखा जाता है अंजलि जी कि वे अपनी चीजें या फिर खिलौने इन सभी को शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: श्रोताओं, ऐसा उनके ज्यादातर अकेले रहने और सामाजिक न होने के कारण अधिक होता है। ये उनके भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है अंजलि जी। तो साथियों, हमें अपने बच्चों के सामने उनके साथ चीजें बांटना उन्हें सिखाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि इस मामले में माता पिता दोनों की अहम भूमिका होती है, खास तौर पर पिता की। पिता होने के नाते आपको अपने बेटे को कई जरूरी बातें सिखलानी होंगी।
0: हाँ।
1: और एक बढ़ता हुआ बेटा अपने पिता से बहुत कुछ सीखता है, इसलिए उसे अच्छी चीजें सिखाने के लिए खुद भी उसके सामने अच्छी चीजों के उदाहरण पेश करें। उन्हें सिखाएं कि परिवार में कब और किसे आपकी जरूरत होती है और इसे कैसे समझा जाए। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, ये भी हमें उन्हें सिखाना है।
0: बिल्कुल।
1: अक्सर हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी अन्य स्थान पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं कशिश, तो बहुत खुशी होती है। तो जब आप बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इस दौरान अगर कोई गर्भवती महिला या बुजुर्ग खड़ा है तो उसे अपनी सीट दें और फिर अपने बच्चे को भी बताएं कि आपने उनकी मदद क्यों की है। आपको भी मौका आने पर ऐसे ही करना है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल। इसी के साथ हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए साथियों कि उसे उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो बीमार हो।
1: जी हाँ।
0: अशक्त हो, तकलीफ में हो। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो किसी भारी बोझ को उठाने या फिर किसी कठिन काम से जूझ रहा है तो हमें उसका बोझ हल्का करने के लिए आगे आना चाहिए साथियों।
1: जी बिल्कुल।
0: साथ ही अगर आपको बताएं तो हमें धर्म की जो संस्थाएं होती है वहाँ पर दान भी देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी बात होती है। आप इसके लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं श्रोता साथियों, क्योंकि बच्चों को इस दिशा में उसकी झिझक छुड़वानी चाहिए आपको।
1: जी हाँ।
0: साथ ही बच्चे को गरीबों और जरूरतमंदों का सम्मान करना भी आपको सिखाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। ये बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही आगे बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में कशिश बहुत अच्छी बातें चल रही है, गीत से पहले हम जान रहे थे कि किस तरीके से हम हमारे बच्चों के अंदर मदद करने की भावना का विकास कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, कुछ बच्चों के पास कुछ असाधारण क्षमताएं होती है, उसकी क्षमताओं को हमें जानना है। आप उसे बचपन से ही मार्शल आर्ट की ओर ले जा सकते हैं, जिससे आगे चलकर वह स्वयं व दूसरों की मदद कर सके।
1: बिल्कुल,
0: उसे आप ऐसी फिल्में दिखा सकते हैं जिससे उसे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिले। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप अपने बच्चों के अंदर दूसरों की मदद करने का भाव डालते हैं तो बड़ा होकर उसका जीवन सुख में बीतेगा।
1: बिल्कुल,
0: दूसरों की मदद के कारण उसका सामाजिक दायरा बड़ा होगा, उसकी भी मदद करने वाले लोगों की संख्या बड़ी होगी।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी श्रोताओं, एक माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि जो बच्चे असाधारण होते हैं उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: यानी कि अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में अगर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे असाधारण बच्चे उन्हें देखने को मिलते हैं।
0: जी जी,
1: और वो ये गलती कर देते हैं कि वो दूसरों के बच्चों की तुलना में उस बच्चे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो हमें अपने बच्चे को ये बताना चाहिए कि ये गलत बात है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें अब हमारे श्रोता साथियों से कि दूसरों की मदद करना हम हमारे बच्चों को कैसे सिखाएं, तो एक प्यारी सी कहानी है जो हम हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक बार की बात है, रोहित नाम का एक छोटा लड़का था। वो एक गरीब परिवार से था कशिश। वह एक दिन लकड़ी लेकर जंगल से गुजर रहा था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा जो कि भूख से मर रहा था।
1: बिल्कुल,
0: रोहित ने उसे खाना खिलाना चाहा था लेकिन उसके पास खुद के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। नतीजन वह अपनी यात्रा जारी रखता है। अपनी यात्रा के दौरान वह एक प्यासे हिरण के पास आया कशिश। वह उसे कुछ पानी देना चाहता था लेकिन वह नहीं दे सका क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह अपनी यात्रा फिर से जारी रखता है।
1: बिल्कुल,
0: तभी उसकी नजर कशिश एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अपना डेरा डालना चाहता था लेकिन उसके पास लकड़ियां नहीं थी। रोहित ने उसकी हालत के बारे में पूछा और उसे कुछ लकड़ियां दी। उसने बदले में उसे कुछ खाने पीने की चीजें दी। वह वापस उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उसे खाना खिलाया, साथ ही हिरण को भी कुछ पानी पिलाया। हिरण और बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही खुश हुए। रोहित फिर से खुशी खुशी अपनी यात्रा जारी कर रहा था। दूसरी ओर रोहित एक दिन ढलान से नीचे फिसल गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था।
1: जी हाँ,
0: जब उसने पहले जिस बूढ़े व्यक्ति की मदद की थी उसने उसे देखा तो वह तुरंत उसके पास गया और उसे ढलान पर खींच लिया। उसके पैर घाव से भरे हुए थे। जब रोहित ने जिस हिरण को पानी पिलाया उसने उसके घाव को देखा तो वह जंगल की ओर भागा और कुछ पौधे लेकर लौटा। कुछ समय बाद उसके घाव भर गए। वे सभी खुशी थे कि वे एक दूसरे की मदद कर पाए।
1: जी हाँ,
0: तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो सब आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जब हमें जरूरत होती है कशिश, तो जो दूसरों को हम प्यार देते हैं, सहायता देते हैं, वह निसंदेह हमें 10 गुना वापस मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें बच्चों को ये सारी चीजों को सिखाना है कि दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें खुशी मिलती

0: बल्कि इससे आपको भी खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, में बच्चों को ये भी बताना है कि मदद करने के बाद आपके मन में अद्भुत भावना होती है। मदद सबसे अच्छे इरादे से की जानी चाहिए। जब आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो आपको दूसरों से समर्थन पाने में मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको सुखद महसूस होता है, आपका जो जीवन है वो भी खुशहाल बना रहता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है कि अगर हम बचपन से ही बच्चों के अंदर मदद की भावना, इसी के साथ शेयरिंग की जो भावना है वो अगर डालेंगे तो देखते हैं कि बच्चों का जो जीवन है वो आगे चलकर बहुत ही अच्छा होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से मदद करने की भावना सिखानी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
3: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं कि संगीत का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि संगीत मानव जीवन की सबसे सुंदर और प्रभावशाली कलाओं में से एक है, यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है श्रोताओं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति, मानसिक शांति और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।
0: जी जी,
1: संगीत मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। लोरी से लेकर भजन, लोकगीत, राष्ट्रगीत और शास्त्रीय संगीत तक हर स्वर जीवन को मधुरता और आनंद से भर देता है।
0: बिल्कुल,
1: संगीत व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और आत्मा को प्रभावित भी करने की अद्भुत क्षमता है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों की शिक्षा, रचनात्मकता और मानसिक विकास में भी संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से बातें तो ढेर सारी करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में मनोरंजन हम उन्हें पहले करवाते हैं, तो आज भी शुरुआत में एक सुनते हैं प्यारा सा गीत यहाँ पर।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं संगीत के महत्व को लेकर, और जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत भी सुना श्रोता साथियों, आपको बताया था जैसा कि गीत से पहले कि संगीत जो है वो हमारे जीवन की सबसे सुंदर और प्रभावशाली कलाओं में से एक है, क्योंकि ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारी आत्मा को जोड़ने वाली एक अद्भुत शक्ति भी है। साथियों, हम देखते हैं जागृति जी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक संगीत ने समाज, संस्कृति और मानव जीवन को गहराई से प्रभावित किया है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में जब युवा साथी जो हैं वो पढ़ाई, प्रतियोगिता, रोजगार और सामाजिक चुनौतियों के बीच अनेक प्रकार के तनावों का सामना कर रहे हैं, तब संगीत उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला एक माध्यम बन चुका है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और जैसा कि हम संगीत के महत्व को लेकर बातचीत कर रहे हैं, संगीत यानी कि सुर, ताल और लय का सुंदर समन्वय।
0: बिल्कुल,
1: जब ध्वनियां निश्चित नियमों और भावनाओं के साथ प्रस्तुत की जाती है तब संगीत का निर्माण होता है। भारतीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन है और इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि भारतीय संगीत में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत और आधुनिक संगीत जैसे अनेक विधाएं शामिल है। संगीत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि मानव जीवन में संगीत एक विशेष स्थान रखता है। मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो संगीत उसके आनंद को बढ़ाता है। जब वो दुखी होता है तो संगीत उसे सांत्वना प्रदान करता है। श्रोता साथियों, संगीत जीवन की निरसता को दूर कर उसमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए कहा जाता है कि संगीत आत्मा की भाषा है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: इसकी मधुर ध्वनियां ही श्रोता साथियों सीधे हमारे मन को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि जब कोई युवा संगीत सुनते हैं या संगीत का अभ्यास करते हैं तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, यही कारण है कि संगीत को जीवन का एक अभिन्न अंग माना गया है। युवा हमारे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनकी सोच, ऊर्जा और रचनात्मकता देश के भविष्य को आकार देती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में दोस्तों संगीत आपके लिए व्यक्तित्व विकास, मानसिक संतुलन और भावनात्मक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि संगीत न केवल जागृति जी जीवन में आनंद बढ़ता है बल्कि ये युवाओं को अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ साथ संवेदनशीलता का गुण भी सिखाता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, चिंता और मानसिक दबाव आम समस्या बन गई है। ऐसे समय में संगीत जो है वो हमें मानसिक शांति देता है।
0: जी,
1: मधुर संगीत सुनने से हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा तनाव कम हो जाता है और सकारात्मक सोच हमारे अंदर विकसित होती है। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमने कई सारे शोधों में देखा है कि संगीत भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करता है।
0: बिल्कुल,
1: संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीत शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विद्यार्थियों की रचनात्मकता, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायता करता है।
0: जी,
1: संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास होता है, अनुशासन होता है और धैर्य जैसे गुण भी विकसित होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कशिश की विद्यालय में संगीत शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी एक अलग ही भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हमारे युवा साथियों से हम संगीत की कला को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो ये बातें हम आगे भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले संगीत के महत्व को लेकर, तो श्रोता साथियों, जैसा कि संगीत के महत्व को लेकर हम आपको बताए हैं, तो युवाओं के जीवन में संगीत प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है।
1: बिल्कुल,
0: संगीत हमें तनाव से राहत देता है कशिश, और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अच्छे और प्रेरणादायक गीत हम युवाओं को सकारात्मक सोच देते हैं, बेहतर जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित भी करते हैं। हम कह सकते हैं कि संगीत के माध्यम से युवा अपनी प्रतिभा को पहचान सकते हैं और जीवन में नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं कि संगीत युवाओं की एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति संगीत सीखता है तो उसे सुर, ताल और लय पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। श्रोता साथियों, ये अभ्यास मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी मजबूत करता है। हम देखते हैं कि यही कारण है कि संगीत सीखने वाले कई विद्यार्थी पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। संगीत, श्रोता साथियों, युवाओं में आत्मविश्वास का भी विकास करती है। जैसे कि जब कोई युवा मंच पर गीत प्रस्तुत करते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं जागृति जी, तो उनमें लोगों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का साहस बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे उनके अंदर का जो संकोच है वो इससे समाप्त तो होता है। और ये गुण, श्रोता साथियों, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे युवा साथियों के लिए सहायक होता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि संगीत मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है। ये केवल कानों को मधुरता नहीं देता, बल्कि मन को शांति, आत्मा को आनंद और जीवन को नई दिशा देता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि संगीत लोगों को जोड़ने, भावनाओं को व्यक्त करने और समाज में प्रेम सद्भाव फैलाने का कार्य करता है। हमें संगीत को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर जीवन के विकास और संतुलन का महत्वपूर्ण माध्यम समझना होगा श्रोताओं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा गया है कि जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहाँ संगीत बोलना शुरू करता है। अपने जीवन में संगीत को स्थान दीजिए, क्योंकि मधुर सुर केवल कानों को नहीं बल्कि पूरे जीवन को भी सुंदर बना देते हैं।
1: जी हाँ, युवा साथियों, संगीत भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। कई बार हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन संगीत के माध्यम से हम अपनी बात आसानी से व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि खुशी, दुख, उत्साह, प्रेम, आशा और प्रेरणा जैसी जो भावनाएं होती हैं, वे संगीत के जरिए सुंदर रूप में सामने आती हैं।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, संगीत से सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब हमारे युवा साथी किसी संगीत समूह, बैंड या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो वे टीम भावना और सहयोग की भावना को सीखते हैं। इससे दोस्तों उनके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और वे समाज के साथ बेहतर तरीके से जुड़ भी पाते हैं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि संगीत केवल सुर और तालों का मेल नहीं है, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली एक अद्भुत शक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: ये दुखी मन को आशा देता है, थके हुए व्यक्ति को नई ऊर्जा देता है और निराशा के अंधकार में आशा का दीपक जलाता है। संगीत हमें संवेदनशील बनाता है श्रोताओं, हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा देता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा सच्चा साथी बनकर साथ निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज जब दुनिया भाग दौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है कशिश, तब संगीत ही मनुष्य को अपने भीतर झांकने और स्वयं से जुड़ने का अवसर देता है। ये हमें सिखाता है कि जैसे एक मधुर धुन कई स्वरों के मेल से बनती है, वैसे ही जीवन की सफलता भी धैर्य, परिश्रम और अनुशासन, साथ ही सकारात्मक सोच के समन्वय से प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में संगीत सीखना पहले की तुलना में अधिक आसान हो चुका है। जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और डिजिटल माध्यमों के जरिए श्रोता साथियों, हम घर बैठे ही संगीत सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी कला को निखारने के लिए अवसर प्राप्त हो रहे हैं जागृति जी। और संगीत के क्षेत्र में आज रोजगार के भी अनेक अवसर उपलब्ध हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि गायक, संगीतकार, संगीत शिक्षक, रिकॉर्डिंग विशेषज्ञ, रेडियो जॉकी, कार्यक्रम संचालक, और दोस्तों ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां युवा अपना करियर बना रहे हैं। इस प्रकार संगीत केवल एक कला नहीं बल्कि रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि युवाओं को संगीत से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संतुलन, रचनात्मकता और आत्मविश्वास विकसित करने होंगे। श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि संगीत हमें संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में उम्मीद है और हौसला जीवित है तो जीवन की हर चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।
1: जी जी,
0: जिस प्रकार कशिश एक छोटा सा स्वर पूरे गीत को सुंदर बना देता है, उसी प्रकार एक सकारात्मक विचार पूरे जीवन को भी बदल देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, हम संगीत को केवल मनोरंजन का साधन न माने बल्कि इसे जीवन को बेहतर बनाने, समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाने तथा मानवता को जोड़ने का माध्यम बनाए। जब हमारे जीवन में संगीत के सुर गूंजेंगे तब हमारे विचारों में मधुरता आएगी, व्यवहार में विनम्रता आएंगे, कर्मों में सकारात्मकता स्वतः ही दिखाई देगी।
1: इसीलिए
0: कहा भी गया है कशिश कि संगीत से सजता है जीवन का हर राग, यही है खुशियों, शांति और सफलता का सुरीला मार्ग। तो श्रोता साथियों, सुरों की शक्ति को पहचानिए, जीवन को मधुर बनाइए, संगीत को अपनाइए और खुशियां और सफलता की नई धुन गुनगुनाइए।
1: बिल्कुल, इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अब जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे जागृति जी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज से हम विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि संगीत केवल सुर और धुनों का मेल नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की एक कला है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि जैसे अलग अलग सुर मिलकर मधुर संगीत बना सकते हैं, ठीक वैसे ही धैर्य, मेहनत और अनुशासन जैसे गुण मिलकर एक सफल जीवन का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में याद रखिए कि हर युवा के भीतर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी हुई होती है। संगीत उस प्रतिभा को निखारने और दुनिया के सामने लाने का एक सुंदर माध्यम है। श्रोताओं,
1: जी हाँ,
0: जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब संगीत बोलता है, और जब मन थक जाता है तब संगीत उसे फिर से जीना सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: और यही संगीत की सबसे बड़ी शक्ति है। जागृति जी,
1: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा हम जरूर लेंगे, पर जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को हम पता बताना चाहेंगे ताकि उनको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए वो अपने राय से जो हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं श्रोता साथियों हम कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है डेमोग्राफी की। अच्छी समझ के बिना हम समस्या नहीं सुलझा सकते। अंजलि, अगर डेमोग्राफी की बात करें तो श्रोता साथियों, सरल शब्दों में कहें तो डेमोग्राफी समाज का वो आईना है, जैसे कि जब भी हम बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संकट या पर्यावरण जैसी समस्याओं की बात करते हैं तो हम अक्सर समाधान खोजने लगते हैं। अंजलि,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है श्रोताओं कि इन समस्याओं से प्रभावित लोग कौन हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी उम्र क्या है और वे कहाँ रहते हैं और उनकी वास्तविक जरूरत क्या है, और यहीं से डेमोग्राफी की शुरुआत होती है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे डेमोग्राफी के बारे में, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है डेमोग्राफी को लेकर, कि डेमोग्राफी की अच्छी समझ के बिना हम समस्याएं नहीं सुलझा सकते।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि डेमोग्राफी आखिरकार है क्या, तो श्रोता साथियों, इसका मतलब है किसी समाज की जनसंख्या की संरचना, विशेषताओं और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन डेमोग्राफी होता है। जैसा कि श्रोता साथियों, उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो यदि हमें यह जानना हो कि भारत के युवाओं की संख्या कितनी है, कितने लोग रोजगार की उम्र में हैं, या आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की संख्या कितनी बढ़ेगी, तो ये जानकारी डेमोग्राफी के माध्यम से प्राप्त होती है।
0: बिल्कुल,
1: डेमोग्राफी वह विज्ञान है जागृति जी, जो लोगों की संख्या, संरचना और उनके बदलावों का अध्ययन करता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि हम डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं तो डेमोग्राफी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि समाज की वास्तविक तस्वीर भी है। ये हमें बताती है कि आज समाज कहाँ खड़ा है और भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना है। यदि किसी डॉक्टर को मरीज की सही बीमारी का पता न हो तो वो इलाज कैसे करेगा। ठीक उसी प्रकार श्रोता साथियों, यदि सरकार और समाज को लोगों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं होगा तो समस्याओं का समाधान भी अधूरा रह जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि समस्याओं को समझने की पहली सीढ़ी क्या है। तो श्रोता साथियों, हर समस्या लोगों से जुड़ी होती है, इसलिए लोगों की स्थिति को समझे बिना समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले डेमोग्राफी का यही नियम होता है कि हमें ये जानना है कि समस्या क्या है, और समस्या को समझकर और लोगों से जुड़कर उनकी बातों को जानकर ही हम उसका समाधान निकाल सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि समस्याओं को समझने की पहली सीढ़ी को लेकर हम बात करते हैं, तो श्रोता साथियों, मान लीजिए किसी शहर में स्कूल की कमी है। यदि ये पता ही नहीं होगा कि वहाँ कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है और अगले 10 वर्षों में बच्चों की संख्या कितनी बढ़ेगी अंजलि, तो नए स्कूलों की योजना हम कैसे बना पाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो वहाँ रोजगार और कौशल विकास की भी आवश्यकता अधिक होगी।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों डेमोग्राफी हमें बताती है कि किस वर्ग की जरूरतें सबसे अधिक है और किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ बात आती है बेरोजगारी की समस्या की। तो आज हम देखते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बेरोजगारी। लेकिन रोजगार योजना बनाने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि कितने युवा काम करने की उम्र में हैं, उनकी शिक्षा क्या है और उनके पास कौन कौन से कौशल है।
0: बिल्कुल,
1: ये जानकारी नहीं होगी तो रोजगार योजना केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी। उदाहरण के तौर पर बात करें जागृति जी, तो युवाओं की संख्या और उनकी क्षमता को समझे बिना रोजगार की समस्या हल नहीं हो सकती। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि किस वर्ग के युवा बेरोजगार बैठे रहते हैं और किस तरीके के युवा को रोजगार मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमें चीजें करने की जरूरत है। जब तक जानकारी का अभाव रहेगा तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान तभी संभव है जब हमें ये पता होगा कि कितने लोग काम करने की उम्र में, जैसा कि अभी आपने बताया। श्रोता साथियों, डेमोग्राफी हमें श्रम शक्ति की वास्तविक स्थिति बताती है और इसी आधार पर रोजगार मेलों, कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की स्थापना, ये सारी योजनाएं बनाई जाती है। और यदि जनसंख्या की संरचना को समझे बिना रोजगार योजना बनाई जाएगी तो उनका लाभ सीमित रह जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि इन्हीं सब चीजों के साथ में शिक्षा की योजना भी शामिल होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अगर जागृति जी मान लिया जाए कि किसी जिले में बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, अगर सरकार को इसका अनुमान ही नहीं होगा तो वहाँ पर्याप्त स्कूल, शिक्षक और साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
0: जी हाँ।
1: उसका परिणाम ये होगा श्रोता साथियों कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसलिए कहा गया है कि जनसंख्या की सही जानकारी ही शिक्षा की मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है, लेकिन शिक्षा की योजना बनाते समय ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने बताया कि कितने बच्चे स्कूल जाने की उम्र में है। श्रोता साथियों, डेमोग्राफी के माध्यम से शिक्षा की वास्तविक जरूरतों को समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम डेमोग्राफी को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि डेमोग्राफी क्या है और किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में इसकी समस्या देखने को मिलती है अगर हमारे पास जानकारी का अभाव रहता है तो।
1: बिल्कुल।
0: अगर यही स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो श्रोता साथियों, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो किसी भी क्षेत्र में अगर बुजुर्गों की संख्या अधिक है तो वहाँ वृद्धजन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होगी। यदि बच्चों की संख्या ज्यादा है तो टीकाकरण और पोषण कार्यक्रमों की जरूरत होगी। जागृति जी, इसका सीधा सा मतलब यही है कि स्वास्थ्य योजनाएं भी जनसंख्या की संरचना पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ अगर हम बात करें शहरीकरण और आवास की समस्या को लेकर तो आज बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं, इससे शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि ये अनुमान न लगाया जाए कि आने वाले वर्षों में कितने लोग शहरों में बसेंगे तो आवास, पानी, बिजली, सड़क और परिवहन की व्यवस्था भी प्रभावित होगी।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, डेमोग्राफी शहरी विकास की योजनाओं को सही दिशा देती है और इसके माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा और इसका असर पर्यावरण और जनसंख्या पर भी पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: जल, जंगल, जमीन सीमित है। यदि जनसंख्या की जरूरतों और संसाधनों के बीच संतुलन नहीं बनाया गया श्रोता साथियों तो पर्यावरण का संकट गहरा जाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जितनी अधिक आबादी होगी उतना अधिक पानी, भोजन और ऊर्जा भूमि की आवश्यकता होगी और यदि जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की उपलब्धता का सही आंकलन नहीं किया गया तो पर्यावरणीय संकट बढ़ सकता है, जैसा कि आपने बताया था। तो श्रोता साथियों, डेमोग्राफी हमें ये समझने में मदद करती है कि संसाधनों का संतुलित उपयोग कैसे किया जाए।
0: जी हाँ, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सच्चा स्वराज और डेमोग्राफी का एक अलग ही संबंध है। कह सकते हैं जागृति जी, स्वराज केवल शासन बदलने का नाम नहीं है, सच्चा स्वराज वो व्यवस्था है जहाँ हर व्यक्ति की जरूरत को समझा जाए और उसके अनुसार योजनाएं बनाई जाएं। जब सरकार और समाज जनता की वास्तविक स्थिति को समझकर निर्णय लेती है तब लोकतंत्र मजबूत होता है।
1: बिल्कुल।
0: और विकास सब तक पहुँचता है। इसलिए कहा गया है जागृति जी कि जनसंख्या की समझ ही सच्चे स्वराज की आधारशिला है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि महात्मा गांधी जी का सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था। उनका सपना था ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति की आवश्यकताओं और अधिकारों का सम्मान हो। लेकिन ये तभी संभव है जब हम समाज की वास्तविक स्थिति को समझे।
0: बिल्कुल।
1: डेमोग्राफी हमें लोगों की जरूरतों और चुनौतियों की सही तस्वीर दिखाती है। जब नीतियां जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बनेंगी तभी सच्चे स्वराज की स्थापना होगी।
0: जी हाँ, इसी के साथ कह सकते हैं जागृति जी कि समस्याएं कभी भी अचानक पैदा नहीं होती
1: है,
0: वे धीरे धीरे बनती हैं और उसका समाधान भी तभी मिलता है जब हम उसकी जड़ों को समझते हैं। डेमोग्राफी हमें उन जड़ों तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। याद रखिए श्रोता साथियों कि सिर्फ जनसंख्या गिनना डेमोग्राफी नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, उनकी जरूरतों और उनके भविष्य को समझना ही असली डेमोग्राफी है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जागृति जी कह सकते हैं कि हम लोगों को समझ लेंगे तो समस्याओं को भी समझ लेंगे। जब समस्याएं समझ में आ जाएंगी तो उनके समाधान भी आसान हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आंकड़ों को केवल संख्या मत समझिए, हर संख्या के पीछे एक इंसान और एक कहानी होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, किसी भी समस्या का समाधान केवल इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सही समझ से होता है और सही समझ तब आती है जब हम लोगों की वास्तविक स्थिति को जानते हैं।
0: बिल्कुल।
1: डेमोग्राफी हमें सिखाती है कि विकास केवल इमारतों और सड़कों का नाम नहीं है, विकास का अर्थ है लोगों की जरूरतों को समझना और उनके अनुरूप योजना बनाना।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम जनसंख्या की संरचना, उसकी चुनौतियाँ और उसकी संभावनाओं को समझ ले तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और पर्यावरण जैसी बहुत सारी समस्याओं का बेहतर समाधान खोज सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जो समाज अपने लोगों को समझ लेता है वो अपने भविष्य को भी संवार लेता है। जन जन की पहचान से विकास होगा, सम्मान होगा। डेमोग्राफी को जो आज समझ जाएगा वही सच्चा स्वराज कहलाएगा।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ श्रोता साथियों से कार्यक्रम में हम यही कहना चाहेंगे कि आज हमने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी बात को जाना है कि डेमोग्राफी क्या होता है और किस तरीके से अगर हमें जानकारी का अभाव रहता है तो समस्याएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। अगर हमें समस्याओं को समाधान के तौर पर लेना

0: उसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से लेनी होगी। तो आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि हम केवल समस्याओं की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि उन जड़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे। हम आंकड़ों को केवल संख्या नहीं मानेंगे बल्कि उनके पीछे छिपे जीवन, संघर्ष, सपनों और संभावनाओं को पहचानेंगे, क्योंकि हर संख्या के पीछे एक इंसान है और हर इंसान के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। जिस समाज को अपनी जनसंख्या की सही समझ होती है, वही समाज अपने भविष्य को सही दिशा दे पाता है।
1: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में बातें ढेर सारी हो गई हैं, तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम को लेकर हाजिर हो चुके हैं हम एक नए विषय के साथ में। आज हम कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा बात करेंगे एक ऐसे खाद्य पदार्थ की जो सस्ता भी है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता।
0: जी हाँ,
1: हम बात कर रहे हैं अंकुरित अनाज की। श्रोता साथियों, आज के समय में लोग स्वास्थ्य सुधार के लिए महंगे अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं, दवाइयों की ओर भागते हैं।
0: जी हाँ,
1: जबकि हमारे घर की रसोई में ही कई ऐसे खजाने मौजूद हैं मनीषा, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज जानेंगे अंकुरित अनाज क्या है, इसे खाने के क्या फायदे हैं और इन्हें हम अपने भोजन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अंकुरित अनाज के फायदे को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में लोग अनेक प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन समस्याओं से बचने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, प्रकृति ने हमें ऐसे अनेक खाद्य पदार्थ प्रदान किए हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं में से एक है श्रोता साथियों अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज न केवल पौष्टिकता से भरपूर होता है साथियों, बल्कि शरीर की ऊर्जा, रोगों से लड़ने की क्षमता और साथ ही बेहतर पाचन शक्ति भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम को ये समझना है कि आखिरकार अंकुरित अनाज है क्या।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जब किसी अनाज, दाल या बीज को कुछ घंटों तक पानी में भिगो कर रखा जाता है, फिर कपड़े में बांध कर या किसी बर्तन में रखा जाता है, तो उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसी प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। मूंग, चना, मेथी, सोयाबीन, गेहूं और कई अन्य अनाजों को अंकुरित किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि अंकुरण के दौरान अनाज के अंदर कई जैविक परिवर्तन होते हैं, इससे उनमें मौजूद पोषक तत्व अधिक सक्रिय और लाभकारी हो जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: अंकुरित अनाज में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है।
0: जी हाँ,
1: यही कारण है कि उन्हें जीवित भोजन भी कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि अंकुरित अनाज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें उपस्थित विटामिन सी, विटामिन ई और विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट शरीर को संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, नियमित रूप से अंकुरित अनाज खाने वाले लोगों को सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा है वो भी कम होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आज कई लोग दिन भर थकान महसूस करते हैं, इसका एक कारण शरीर को पर्याप्त पोषण न मिलना भी है। अंकुरित अनाज शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन्हें खाने से शरीर जो है वो लंबे समय तक सक्रिय रहता है और कमजोरी कम महसूस होती है।
0: जी हाँ,
1: जो लोग खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, विद्यार्थी हैं या घर का काम संभालने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए अंकुरित अनाज बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के समय में कब्ज, गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं वो भी सामान्य हो गई हैं। अंकुरित अनाजों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है साथियों, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: फाइबर भोजन को आसानी से पचाने में सहायता करता है और साथ ही हमारे आंतों की सफाई भी करता है। इससे कब्ज जैसी समस्याएं होती है उनसे भी राहत मिलती है और साथ ही श्रोता साथियों, पाचन तंत्र हमारा है वो स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली की जरूरत होती है।
0: जी हाँ,
1: अंकुरित अनाज में विटामिन सी, विटामिन ई, कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: जो शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। मौसम बदलने पर होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से बचाव में भी ये मददगार साबित होते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से अंकुरित अनाज के फायदों को लेकर बातें चल ही रही हैं और कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि अंकुरित अनाज क्या है, अंकुरित अनाज में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में किस प्रकार सहायक है, और साथ ही हमने बात की कि पाचन तंत्र को यह स्वस्थ कैसे रखता है। तो ये बातें आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि बच्चों के लिए भी अंकुरित अनाज लाभकारी होता है।
1: जी हाँ।
0: बढ़ते बच्चों को अच्छे पोषण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को नियमित रूप से अंकुरित मूंग, चना या अन्य अंकुरित अनाज दिए जाए तो उनके शरीर और मस्तिष्क का विकास बेहतर होता है।
1: जी हाँ।
0: इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, वे अधिक सक्रिय रहते हैं और पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, महिलाओं को अक्सर खून की कमी, कमजोरी और थकान जैसे समस्या का सामना करना पड़ता है। अंकुरित अनाज में मनीषा आयरन, कैल्शियम और कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: जो महिलाओं के स्वास्थ्य को, श्रोता साथियों, बेहतर बनाने में मदद करते हैं। गर्भवती महिलाओं, किशोरियों के लिए भी संतुलित मात्रा में अंकुरित अनाज लाभकारी हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मोटापा है वो वर्तमान की एक गंभीर समस्या बन चुका है। अंकुरित अनाज वजन को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है साथियों, क्योंकि इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम तथा फाइबर अधिक होता है। हम देखते हैं कि फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती है और अनावश्यक खाने की आदत है वो भी कम हो जाती है। इस प्रकार श्रोता साथियों, हमारा वजन ही वो नियंत्रित रहता है।
0: बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि अंकुरित अनाज में मौजूद पोषक तत्व हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसमें वसा की मात्रा कम और फाइबर अधिक होता है, जैसा कि आपने बताया, जिससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। स्वस्थ हृदय का मतलब है बेहतर जीवन और लंबी आयु।
1: जी हाँ।
0: साथियों, अंकुरित अनाज तैयार करना बहुत आसान है। सबसे पहले मूंग या चने को अच्छी तरह धोकर रात भर पानी में हमें भिगो देना है। सुबह पानी निकाल कर इन्हें साफ कपड़े में बांध दें। एक या दो दिन बाद इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे।
1: जी हाँ।
0: खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें नींबू, टमाटर, प्याज, हरा धनिया मिलाकर स्वादिष्ट सलाद भी बनाया जा सकता है। श्रोता साथियों, अंकुरित अनाज बहुत लाभकारी है, लेकिन इनकी साफ सफाई का ध्यान बहुत रखना होता है।
1: जी हाँ।
0: यदि अनाज खराब हो जाए, उसमें दुर्गंध आने लगे तो उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में खाने के बजाय संतुलित मात्रा में ही सेवन करना बेहतर होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यह हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। अंकुरित अनाजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बढ़ते बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अंकुरित अनाज विशेष रूप से लाभकारी होता है।
0: जी जी।
1: साथ ही हम देखते हैं कि स्वस्थ त्वचा और मजबूत बाल अच्छे स्वास्थ्य के संकेत होते हैं। अंकुरित अनाजों में पाए जाने वाले विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसके नियमित सेवन से श्रोता साथियों, त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है और बालों की जड़ें हैं वो भी मजबूत होती हैं।
0: जी हाँ मनीषा, क्योंकि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि सही खानपान से बनता है।
1: जी हाँ।
0: अंकुरित अनाज हमें यह सिखाते हैं कि पोषण पाने के लिए हमेशा महंगे विकल्पों की जरूरत नहीं होती। हमारे घर की साधारण दालें और अनाज भी असाधारण लाभ दे सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, यदि हर परिवार अपनी दैनिक थाली में अंकुरित अनाज को थोड़ा थोड़ा स्थान दे दे तो कुपोषण, कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: यह केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है मनीषा, बल्कि स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाया गया एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम सभी को ये मानना होगा कि हम स्वयं भी अंकुरित अनाज खाएंगे और अपने परिवार, बच्चों और समुदाय को भी इसके लाभों के बारे में जागरूक करेंगे। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज की शुरुआत हमारी थाली से ही होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि अंकुरित अनाज प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक सस्ता और सरल और अत्यंत पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पाचन सुधारने में और वजन नियंत्रण में भी ये सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, आज जब लोग विभिन्न जीवन शैली संबंधित रोगों से जूझ रहे हैं, तब अंकुरित अनाजों को दैनिक भोजन बनाने का हिस्सा हमारे लिए एक सरल और प्रभावी उपाय हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम नियमित रूप से अंकुरित अनाजों का सेवन करें और संतुलित जीवन शैली को अपनाएं, तो स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग मुक्त जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत हो गई है और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी बिल्कुल।
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थी जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। एक ऐसा मंच साथियों जहां हम सपनों को हकीकत में बदलने की बात करते हैं। लेकर हाजिर हो चुकी हूं एक नए विषय के साथ में आज के इस कार्यक्रम को। साथियों, आज का हमारा विषय है छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। साथियों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये सच भी है क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे बड़े भविष्य की नींव बनती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। जानेंगे दोस्तों कि छोटी आदतें क्या होती है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव कर सकती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, और मनोरंजन के बिना तो ये कार्यक्रम भी अधूरा है। साथियों, तो आइए सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको विषय बता दिया है कि आज हम बात कर रहे हैं छोटी आदतें बड़ा बदलाव लेकर आती है, इस विषय को लेकर। दोस्तों अक्सर हम ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा मौका, बड़ा फैसला या बड़ा जोखिम। लेकिन साथियों सच तो ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से ही आते हैं। छोटी आदतें क्या है, जैसे कि रोज 10 मिनट पढ़ना, समय पर उठना, अपने लक्ष्य लिखना, किसी की मदद करना और रोज खुद से एक सकारात्मक बात कहना। श्रोता साथियों, दोस्तों ये सब चीजें छोटी लग सकती हैं, पर जब ये आदतें बन जाती हैं तो यही आपकी पहचान भी बन जाती है। हम देखते हैं दोस्तों कि यही होती है छोटी आदतें। बात करें अगर आदतों की ताकत की तो श्रोता साथियों, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम रोज कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों किसी ने सही कहा है कि हम रोज जो करते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर आप दोस्तों रोज थोड़ी मेहनत किसी चीज को लेकर करते हैं तो एक दिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक छात्र है जो रोज 20 मिनट पढ़ता है साथियों, और दूसरा छात्र सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ता है, तो आपके हिसाब से आगे कौन जाएगा? स्पष्ट है श्रोता साथियों कि वो छात्र जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि छोटी आदतें बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, क्योंकि एक छात्र ऐसा है जो रोज रोज नहीं पढ़ता, लेकिन एक छात्र ऐसा है जो रोज रोज पढ़ता है। तो ऐसे में वर्तमान में हमारी समस्या यही है दोस्तों कि हम जब किसी काम को कर रहे होते हैं तो पहली बार में हम उस काम को एकाग्रता के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी आदत में नहीं है। लेकिन वही दोस्तों अगर हम उसे एकाग्रता के साथ करेंगे, एक बार हमने किया, दूसरी बार हमने किया, तीसरे बार में वो हमारी आदत बन जाएगी। क्योंकि हम जो काम रोज रोज करते हैं ना श्रोता साथियों, तो एक न एक दिन वो हमारी आदत बन जाती है, और यही छोटी आदतें आगे जाकर बड़े बदलाव लाती हैं श्रोता साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी चीजें जो होती हैं वो हमें डराती हैं, लेकिन जो छोटी आदतें और जो छोटी चीजें होती हैं वो हमें सहज बनाती है श्रोता साथियों। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना है, तो दिमाग हमारा डर जाएगा, यानी कि पढ़ने से पहले ही हमारे अंदर चिंता और भय घर कर जाएगा, और हम ये सोचने लगेंगे कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा कैसे, क्योंकि मैंने उसे कह तो दिया कि मैं 5 घंटे पढ़ लूंगा। लेकिन जब वो चीज आपकी आदत में ही नहीं है तो उस काम को आप करेंगे कैसे श्रोता साथियों? लेकिन अगर आप खुद से ये कहें कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, तो आपका दिमाग मान जाएगा श्रोता साथियों, और फिर श्रोता साथियों यही 15 मिनट रोज रोज के 1 घंटा बन जाएंगे। कह सकते हैं कि रोज जब हम धीरे धीरे 15 मिनट पढ़ेंगे श्रोता साथियों, तो कह सकते हैं कि वो 15-15 कब 30 हो जाएंगे, और कब वो 30-30-60 हो जाएंगे श्रोता साथियों, हमें पता ही नहीं चलेगा, और फिर वो हमारी आदत में रह जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे और हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, और छोटी आदतें किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव लेकर आती हैं, उस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं साथियों, तो आगे भी ये बातचीत हमारी जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में, तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, क्योंकि दोस्तों असली उड़ान तो अभी बाकी है। तो आगे और भी बातें होंगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, छोटी आदतें बड़े बदलाव किस प्रकार से लाती है, इस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और गीत से पहले दो उदाहरणों के माध्यम से हम समझ पाए थे श्रोता साथियों कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे हमारे प्रयास है वो जब हमारी जीवन शैली में हमारी आदत का रूप ले लेते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा संवर जाता है। जैसा कि हमने एक छात्रा का उदाहरण भी लिया था। अब यही अगर बात करें श्रोता साथियों कि जीवन को बदलने के लिए क्या ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनानी है। जैसे कि दोस्तों, सुबह जल्दी उठने की आदत। दोस्तों, सुबह का समय जो होता है वो काफी शांत और सकारात्मक होता है। ऐसे में अगर आप किसी काम को करते हैं सुबह के समय में तो वो काम कह सकते हैं कि सफल भी होता है। इसलिए हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं श्रोता साथियों। इसी के बाद जो दूसरी आदत है वो हम अपना सकते हैं, कुछ नया सीखने की। यानी कि दोस्तों, आपको रोज कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वो एक शब्द हो सकता है, एक विचार हो सकता है या फिर एक कौशल हो सकता है। दोस्तों, इसी के आगे बात करूं लक्ष्य की, तो लक्ष्य को तो श्रोता साथियों हम सभी ही पाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको अपने जो गोल्स हैं उन्हें लिख कर रखना है। दोस्तों, लिखने से क्या होगा कि वो जल्दी पूरे होंगे, क्योंकि हम उस चीज को बार बार देखेंगे, हमें याद रहेगा कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। तो कह सकते हैं कि हम उसके लिए मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद श्रोता साथियों एक न एक दिन हम सफल जरूर होंगे और हम अपनी मंजिल को पार कर ही लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, रोज आपको तीन चीजें लिखनी चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें श्रोता साथियों बनाया है और हमारे अंदर जो भी गुण हैं वो ईश्वर से ही हमें प्राप्त किए गए हैं। तो हमें सबसे पहले तो दोस्तों ईश्वर का आभारी होना चाहिए। इसी के साथ आप खुद से ये कहें कि आप हर चीज में परफेक्ट हैं और आप हर काम को करने के लिए सक्षम हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कुछ ऐसी सकारात्मक आदतें होती हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। और जब पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं दोस्तों, तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाऊं, तो एक लड़का था जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने फैसला किया कि वो रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा। साथियों, शुरुआत में उसे काफी मुश्किल लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मिनट भी कोई मुश्किल है क्या? लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, तो वो 10 मिनट भी हमें 10 घंटे के बराबर लगते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, वह रोज थोड़ा थोड़ा 10 मिनट पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा दोस्तों। फिर वही 6 महीने बाद वही लड़का क्लास में टॉप करता है। दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या देखा कि उस बच्चे का जीवन बदल गया सिर्फ एक छोटी सी आदत से। सिर्फ एक 10 मिनट पढ़ने की आदत से श्रोता साथियों उस बच्चे ने क्लास में टॉप किया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कुछ छोटी मोटी आदतें होती हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं, उन्हें अपने जीवन में हमें जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, आदतें बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है श्रोता साथियों। जैसे कि आप छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। रोज एक ही समय पर दोस्तों आपको काम करने की आवश्यकता है, और अगर आप जब उस काम को पूरा कर ले तो आप खुद को इनाम भी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है दोस्तों, जिससे आप उस चीज को करने में प्रोत्साहित होंगे। गलती होने पर खुद को माफ भी कर लें, यानी कि पश्चाताप न करें, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि हर इंसान छोटी छोटी आदतें जब अपनाने लगता है तो एक समाज बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हम ये छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें देखकर भी इस चीज के बारे में सीख लेते हैं। हम देखेंगे कि जब हम ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे श्रोता साथियों, तो सिर्फ हम ही नहीं पूरा समाज बदल सकता है। जैसे कि कूड़ा कचरा न फैलाना, पानी बचाना, दूसरों का सम्मान करना, ये कुछ ऐसी छोटी चीजें होती हैं श्रोता साथियों, लेकिन इसके बदलाव जो है वो काफी बड़े होते हैं। तो ऐसे में आपसे कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज से ही श्रोता साथियों एक छोटी आदत को आप चुनिए और खुद से ये वादा कीजिए कि आप इस आदत को रोज निभाएंगे। क्योंकि दोस्तों, छोटी आदतें ही बड़े सपनों की उड़ान बनती हैं। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं, और मैं देख रही हूँ कि अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में।
तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी, और आप भी अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतों को अपना कर अपनी जिंदगी में सफल होंगे। श्रोता साथियों, तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे एक नए विषय के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
5: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
0: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
6: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
6: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
6: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को मधुरता ऊर्जा और आनंद से भर देता है।
0: बिल्कुल,
1: आज हमारी बातचीत का विषय है संगीत का महत्व। जैसा कि कशिश, कल 21 जून का दिन था और कल हमने योग दिवस मनाया, संगीत दिवस मनाया, साथ ही हमने पिता के महत्व पर भी बातचीत की और रविवार का जो दिन गया था उस पर हमने योग के महत्व को बातचीत की थी, क्योंकि रविवार को हमारी मुलाकात श्रोता साथियों से नहीं हो पाती है।
0: जी जी,
1: आज कार्यक्रम में हम जानेंगे संगीत का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, संगीत केवल सुरों और तालों का मेल नहीं बल्कि यह भावनाओं की भाषा है। यह वह शक्ति है जो बिना शब्दों के भी दिल से दिल तक पहुँच जाती है।
0: जी हाँ,
1: खुशी हो या दुख, उत्सव हो या एकांत, संगीत हर परिस्थिति में हमारा साथ बन जाता है। आज कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे कि संगीत क्या है और जीवन में संगीत का स्थान क्या है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि हमारे कार्यक्रम का भी दस्तूर है गीत संगीत के साथ मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल,
0: और गीत संगीत के बिना तो हमारा कार्यक्रम अधूरा माना जाता है।
1: जी जी,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा एक पहले यहाँ गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज का हमारा विषय है आपसे बातचीत का संगीत के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी हम सभी जानते हैं कि संगीत मानव जीवन की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली कलाओं में से एक है। दोस्तों यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है, मानसिक शक्ति है, शांति है, सामाजिक एकता है और सांस्कृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: देखते हैं कि संगीत वह भाषा है जिसे बिना शब्दों के भी समझा जा सकता है। साथियों, यह मनुष्य के हृदय को स्पर्श करती है, उसकी भावनाओं को व्यक्त करती है और जीवन में आनंद उत्साह के साथ साथ सकारात्मकता का संचार भी करती है।
1: बिल्कुल कशिश, संगीत ध्वनि लय और स्वर का ऐसा सुंदर संयोजन है जो मन को आनंद और शांति प्रदान करता है। यह मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित हुई एक ऐसी कला है
0: जी,
1: जो घर, संस्कृति और समाज किसी भी रूप में मौजूद है। भारत में संगीत की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी संगीत का उल्लेख मिलता है।
0: जी जी,
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत और आधुनिक संगीत सभी हमारे सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। और इसी के साथ अगर हमारे दोस्तों को हम बताएं तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक संगीत ने हमारी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, संगीत मनुष्य के जीवन के प्रत्येक चरण में उपस्थित रहता है। जैसे कि जन्म के समय लोरी, जन्म का समय हो, लोरी हो, विवाह के समय हो, मंगल गीत गाए जाते हैं वो वाला समय हो, या फिर त्योहार पर भजन का समय हो, ये सभी श्रोता साथियों अन्य अवसरों पर अलग अलग प्रकार के गीत हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: संगीत जीवन को सुंदर, मधुर और आनंदमय बनाता है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि जब मनुष्य दुखी होता है तब भी संगीत उसे सांत्वना देता है, और जब वह प्रसन्न होता है तब संगीत उसकी खुशी को और भी बढ़ाने का कार्य करता है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कृष्ण, संगीत हमारे जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण अवसर से जुड़ा होता है। जन्म से लेकर जीवन के अलग अलग पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे लोरी सुनाई जाती है, त्योहारों में गीत गाए जाते हैं, विवाह समारोह संगीत के बिना अधूरे लगते हैं, धार्मिक आयोजन में भजन कीर्तन होते हैं, यहाँ तक कि कई बार कठिन परिस्थितियों में भी संगीत हमें मानसिक सहारे देता है।
0: जी जी,
1: इस प्रकार संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद तेजी से बढ़ने वाली समस्या बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में संगीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावी माध्यम साबित होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम अपनी पसंद का संगीत सुनते हैं कशिश, तो मन शांत होता है, तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है।
0: बिल्कुल,
1: कई शोध से ये पता चलता है कि संगीत सुनने से मस्तिष्क में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो खुशी और संतोष की भावना पैदा करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में अब संगीत चिकित्सा या म्यूजिक थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। इससे मरीज को मानसिक राहत मिलती है और उपचार की प्रक्रिया में भी मिल पाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि आज के तनावपूर्ण जीवन में संगीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक औषधि के समान माना जाता है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि संगीत सुनने से मस्तिष्क में ऐसे कुछ हार्मोन सक्रिय होते हैं जो प्रसन्नता और संतोष की भावना हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि संगीत से हमारा तनाव भी कम होता है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा इससे बढ़ती है।
1: जी जी,
0: इसलिए कई डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव में हो या फिर परेशान हो तो हमें संगीत सुनना चाहिए। अंजलि,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें चल रही है संगीत के महत्व को लेकर, श्रोता साथियों, संगीत बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: बिल्कुल,
0: संगीत से बच्चों की रचनात्मकता बढ़ती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है और सीखने की क्षमता में सुधार आता है। जो बच्चे संगीत सीखते हैं उनमें अनुशासन, धैर्य और एकाग्रता का विकास अधिक होता है। संगीत बच्चों को भावनाओं को समझने और व्यक्त करने का अवसर भी देता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों के विद्यालय में संगीत शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह केवल कला का विकास नहीं करती बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हमने हमारे साथियों को बताया था कि जो संगीत है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यही अगर बात करें तो संगीत केवल मानसिक स्वास्थ्य के ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। जैसे कि दोस्तों, मधुर संगीत सुनने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय की धड़कन संतुलित रहती है और शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है। अंजलि जी
0: बिल्कुल,
1: साथ ही व्यायाम और योग के दौरान संगीत का उपयोग करने से व्यक्ति अधिक उत्साह और एकाग्रता के साथ अभ्यास कर पाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि अस्पतालों में भी रोगियों के उपचार के दौरान संगीत का उपयोग किया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जिससे उनकी चिंता कम होती है और उनको स्वास्थ्य लाभ ढेर सारे होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि संगीत हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत एक उपहार की तरह होता है। आज संगीत केवल शौक नहीं बल्कि एक सम्मानजनक करियर भी बन चुका है।
1: जी हाँ,
0: गायक, संगीतकार, वादक, संगीत शिक्षक, साउंड इंजीनियर, रेडियो जोकी और संगीत निर्माता जैसे अनेक क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कलाकार अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार श्रोता साथियों, संगीत कला के साथ साथ आर्थिक अवसरों का भी स्रोत बन गया है।
1: जी
0: हाँ, भारत में संगीत कशिश अध्यात्म का गहरा संबंध रहा है। भजन, कीर्तन, सूफी संगीत और गुरु वाणी जैसे अनेक रूप लोगों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं।
1: जी
0: जब मन अशांत होता है तब मधुर संगीत हमें भीतर से सुकून देता है। कई लोग ध्यान और योग के बारे में भी संगीत का सहारा लेते हैं। संगीत मनुष्य को संस से जोड़ने और आत्मिक संतुलन स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें संगीत शिक्षा की तो संगीत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। यह विद्यार्थियों के बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं कि संगीत सीखने से स्मरण शक्ति, एकाग्रता शक्ति और रचनात्मक शक्ति भी बढ़ती है। अंजलि जी, विद्यालयों में संगीत शिक्षा विद्यार्थियों में अनुशासन के साथ साथ सहयोग और आत्मविश्वास का विकास करती है।
0: जी जी।
1: साथ ही संगीत के माध्यम से बच्चों को संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जा सकती है।
0: जी हाँ कशिश, संगीत का लाभ उठाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पेशेवर कलाकार बने। हम अपने दैनिक जीवन में भी संगीत को शामिल कर सकते हैं।
1: जी,
0: सुबह कुछ समय मधुर संगीत सुनना, बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, लोक गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, सकारात्मक और प्रेरणादायक संगीत को अपनाना हमारे जीवन को अधिक संतुलित और आनंदमय बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: हमें ऐसे संगीत का चयन करना चाहिए श्रोता साथियों जो मन को सकारात्मक, शांति और अच्छे विचार का संचार करे। संगीत केवल कशिश कानों को अच्छा लगने वाली ध्वनि नहीं है बल्कि यह मनुष्य की भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल,
0: यह दुख को सांत्वना देता है, खुशी में उत्साह बढ़ाता है, तनाव में राहत देता है और अकेलेपन में साथी बन जाता है।
1: जी हाँ,
0: संगीत वह शक्ति है जो मनुष्य के भीतर छिपी संवेदनाओं को जगाती है और भीतर को अधिक सुंदर, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है श्रोता साथियों और जीवन की भागदौड़ बढ़ती जा रही है तब संगीत हमें अपने भीतर झांकने, खुद को समझने और मानसिक शांति पाने का अवसर देता है। इसलिए संगीत को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझे श्रोता साथियों बल्कि इसे जीवन को बेहतर बनाने वाली एक सकारात्मक शक्ति के रूप में अपनाए, तभी हम संगीत के महत्व को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही अगर बात करें तो श्रोता साथियों, संगीत हमारे व्यक्तित्व को निखारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि संगीत सीखने से आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है जिससे मंच पर प्रस्तुति देने की क्षमता लोगों की विकसित होती है।
0: जी जी।
1: और साथ ही अंजलि जी, संवाद कौशल में भी सुधार आता है। देखा जाता है कि संगीत व्यक्ति को संवेदनशील, सहनशील और रचनात्मक भी बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: यह उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत का हमारे जीवन में काफी महत्व है, क्योंकि संगीत सुनने से, संगीत में अपना करियर बनाने से हमें ढेर सारे लाभ होते हैं अंजलि जी।
0: जी हाँ, संगीत मनुष्य के उन अनमोल धरोहर में से एक है जिसने सदियों से समाज को संवेदनशील, संस्कारित और जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: जी हाँ,
0: केवल एक कला नहीं बल्कि जीवन को महसूस करने का एक माध्यम है। जब शब्द अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं तब संगीत भावनाओं को अभिव्यक्त करने का कार्य करता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि दुनिया के हर समाज, हर संस्कृति और हर युग में संगीत का विशेष स्थान रहा है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत ही अच्छे विषय को लेकर चल रही है और हम संगीत के महत्व के बारे में जान रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो काफ़ी रोचक है, साथियों बात कर रहे हैं संगीत को लेकर। और गीत से पहले हमने जाना था कि किस प्रकार से संगीत शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और संगीत से व्यक्ति कितना कह सकते हैं अंजलि जी कि अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। अब यही अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति में संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश की संगीत श्रोता साथियों परंपरा जो है वो हजारों वर्षों पुरानी है। वेदों में सामवेद को संगीत का आधार माना गया है अंजलि जी। वहीं हम देखते हैं श्रोता साथियों कि भारतीय शास्त्रीय संगीत अपनी गहराई और आत्मिकता के लिए काफी प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल,
0: राग और ताल की समृद्ध परंपरा भारतीय संगीत की कह सकते हैं कि पहचान है। और संगीत ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि आज तकनीक के इस दौर में जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं तनाव, अकेलापन और आपसी दूरियां भी बढ़ी हैं। ऐसे समय में संगीत हमें मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। यह हमें रुक कर अपने मन की आवाज सुनने, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने और रिश्तों की गर्माहट को समझने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल,
1: संगीत यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन, सामंजस्य और लय कितनी आवश्यक है। जैसे एक सुंदर गीत कई स्वरों के मेल से बनता है, वैसे ही एक सुंदर समाज भी अलग अलग लोगों के सहयोग और सम्मान से बनता है।
0: जी हाँ,
1: हमें अपनी नई पीढ़ी को केवल आधुनिक संगीत से नहीं बल्कि लोक संगीत, भजनों और अपनी सांस्कृतिक संगीत परंपराओं से परिचित कराना चाहिए। इससे वे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
0: जी हाँ।
1: साथ ही श्रोता साथियों, संगीत को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम से भी जोड़कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम संगीत को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखें बल्कि इसे अपने जीवन में सकारात्मक, संवेदनशील और आनंद का स्रोत बनाएं, क्योंकि संगीत वह प्रकाश है जो मन की अंधेरी गलियों को रोशन कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को संभाल सकता है और वह माध्यम है जो इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करता है।
0: जी हाँ।
1: संगीत के सुरों में छिपा यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, आशा, प्रेम और खुशी की धुन हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, वहीं अगर संगीत को हम सामाजिक एकता के माध्यम से देखें तो दोस्तों संगीत समाज को जोड़ने का कार्य करता है। यह भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को एक सूत्र में बांधता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों, राष्ट्रीय आयोजनों में संगीत लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता है।
1: जी
0: अंजलि जी, राष्ट्रगीत, देशभक्ति गीत और लोकगीत जो है वो समाज में सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं। साथ ही संगीत लोगों को एक दूसरे की संस्कृति और समझने के साथ साथ सम्मान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी
0: हम कह सकते हैं कि लोक संगीत किसी क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का दर्पण माने जाते हैं। दोस्तों, भारत के राज्यों में अलग अलग प्रकार के लोकगीत प्रचलित हैं जो वहाँ की संस्कृति और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। देख सकते हैं कि लोक संगीत ग्रामीण जीवन की सरलता, प्रकृति के प्रति प्रेम और सामाजिक संबंधों को जीवन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि संगीत केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि यह जीवन को सुंदर बनाने वाली एक अदृश्य शक्ति है। यह हमारे विचारों को दिशा देता है, भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है और मन को नई ऊर्जा प्रदान करता है।
0: जी,
1: जिस प्रकार भोजन जो है वो शरीर को पोषण देता है, उसी प्रकार संगीत मन और आत्मा को पोषित करता है। यही कारण है कि संगीत का प्रभाव उम्र, भाषा और शिक्षा और सीमाओं से परे जाकर हर व्यक्ति पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: संगीत हमें सिखाता है कि जीवन में केवल सफलता प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसे आनंद और संतुलन के साथ जीना भी उतना ही आवश्यक है। यह हमें संवेदनशील बनाता है, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करता है और हमारे भीतर छिपी रचनात्मकता को बाहर लाता है।
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा समाज जहाँ कला और संगीत को सम्मान मिलता है, वहाँ मानवीय मूल्य भी अधिक मजबूत होते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय संगीत के लिए अवश्य निकालें।
0: जी हाँ।
1: बच्चों को संगीत से जोड़े, युवाओं को उनकी सकारात्मक शक्ति से परिचित कराएं और अपने लोक सांस्कृतिक धरोहर को संजोग कर रखें।
0: बिल्कुल,
1: संगीत केवल मंचों और कार्यक्रमों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन, परिवार और समाज का स्वाभाविक हिस्सा बनना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: संगीत हमें यह एहसास कराता है कशिश कि जीवन केवल जिम्मेदारियों और संघर्षों का नाम नहीं है बल्कि उसमें खुशी, प्रेम, आशा और आत्मिक संतोष के लिए भी स्थान होना चाहिए।
0: जी
1: जब मन थक जाए, जब परिस्थितियां कठिन लगने लगे, जब शब्द साथ छोड़ दें तब संगीत ही वह शांति बनाता है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा देता है।
0: बिल्कुल,
1: संगीत को सुनिए, समझिए, अपनाइए और उसके माध्यम से अपने जीवन को मधुर बनाइए, सकारात्मक और अर्थपूर्ण बनाइए। यही संगीत का सबसे बड़ा महत्व और यही उसकी सबसे बड़ी सुंदर विशेषता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसलिए कहा जाता है कि संगीत मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। साथियों, आज टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संगीत हर व्यक्ति के पहुंच में है।
1: बिल्कुल,
0: लोग अपने खाली समय में अंजलि जी संगीत सुनकर मानसिक ताजगी और आनंद प्राप्त करते हैं। साथ ही फिल्म संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत की विभिन्न शैलियां लोगों को मनोरंजन के अनेक विकल्प प्रदान करती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हमारे युवाओं के जीवन में संगीत का विशेष स्थान है। ये उनके प्रेरणा, उत्साह और आत्मविश्वास का एक माध्यम हो सकता है दोस्तों।
1: जी जी,
0: ऐसे में सकारात्मक और प्रेरणादायक संगीत युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जरूरी है कि युवा अच्छे और सार्थक संगीत का चयन करे, क्योंकि संगीत का प्रभाव उनके विचारों और व्यवहार पर जरूर पड़ता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि संगीत क्या है और इसका क्या महत्व है। आगे भी बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि संगीत दिवस को लेकर बहुत अच्छी बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं,
1: जी हाँ,
0: यही कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि संगीत मनुष्य की सभ्यता के साथ जन्मी ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसने हर युग में लोगों को प्रेरित करने, जोड़ने और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का कार्य किया। समय बदला, जीवन शैली बदली, साधन बदले, लेकिन संगीत का महत्व कभी कम नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि संगीत सीधे मनुष्य के हृदय से संवाद करता है। यह केवल सुनने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव है।
1: जी हाँ।
0: जब कोई किसान खेत में काम करते हुए लोकगीत सुनता है, जब कोई माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाती है, जब किसी त्योहार पर पूरा गांव गीत संगीत में झूम उठता है, या जब कोई व्यक्ति कठिन समय में किसी मधुर धुन से हिम्मत पाता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि संगीत हमारे जीवन के कितने करीब है।
1: यह
0: केवल मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमारे भीतर आशा जगाता है, निराशा को कम करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। संगीत का एक बड़ा योगदान यह भी है कि यह हमें अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़कर रखता है। हमारे लोकगीतों, भजनों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक धुनों में हमारे पूर्वजों के अनुभव, संघर्ष और जीवन दर्शन छिपे हुए हैं। यही यदि हम इन्हें संजोकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, तो हम केवल संगीत को नहीं बचाते कशिश, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि संगीत केवल कला का एक रूप नहीं है बल्कि मानव आत्मा की अभिव्यक्ति है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, ये संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। चाहे भक्ति का वातावरण हो, उत्सव का अवसर हो या फिर अकेलेपन का समय।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, संगीत हर परिस्थिति में हमारा सच्चा साथी बनकर हमारा साथ देता है। इसलिए ये कहा जाता है कि संगीत जो है वो जीवन की मधुरता और सुंदरता का भी प्रतीक है।
0: जी जी।
1: जिस प्रकार प्रकृति में बहती नदियां और चहचहाते पक्षी वातावरण को जीवंत बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार संगीत मानव जीवन को आनंद, शांति और अर्थ प्रदान करता है।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी, संगीत के बिना जीवन की नीरसता प्रतीत हो सकती है, इसलिए हमें इसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन में इसे विशेष स्थान जरूर देना चाहिए।
0: जी हाँ कशिश, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है, संगीत लोगों के बीच संवाद, आत्मीयता का पुल बना सकता है।
1: जी
0: हाँ। परिवारों को करीब ला सकता है, समुदायों को जोड़ सकता है और समाज में सौहार्द की भावनाओं को मजबूत कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: संगीत हमें याद दिलाता है कि इंसान केवल बुद्धि से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जीता है। इन्हीं भावनाओं को जीवित बनाए रखने में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: जी हाँ।
0: हम संगीत को केवल एक शौक या मनोरंजन का साधन न माने श्रोता साथियों, बल्कि इसे अपने जीवन का एक सकारात्मक साथी बनाएं। अपने घरों में, अपने बच्चों के जीवन में और अपने समाज में संगीत के लिए स्थान बनाएं, क्योंकि जहाँ संगीत होता है वहाँ संवेदनाएं जीवित रहती हैं, रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और जीवन में उम्मीद की रोशनी कभी मंद नहीं पड़ती। संगीत हमें जीने की कला सिखाता है, मन को ऊंचाइयों तक ले जाता है और जीवन को केवल बिताने नहीं बल्कि खूबसूरती से जीने की प्रेरणा भी देता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें चाहिए कि हम संगीत की मधुरता को हमारे जीवन में अपनाए और हमारे जीवन को आनंद, शांति और सकारात्मकता से भर दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि संगीत वह भाषा है जिसे समझने के लिए किसी शब्द या भाषा की आवश्यकता नहीं होती, वह सीधे हृदय से संवाद करती है।
0: बिल्कुल।
1: मानव जीवन को भावनाओं, संवेदना और आनंद से ये भर देती है। साथ ही संगीत में लोगों को जोड़ने, दुख में सांत्वना देने और खुशी के क्षणों को यादगार बनाने की अद्भुत क्षमता होती है।
0: बिल्कुल।
1: ये जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच मन को सुकून प्रदान करते हैं साथियों, और व्यक्ति को नई ऊर्जा से भी भर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दोस्तों, यह बात स्पष्ट है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि मानव जीवन को समृद्ध, सुखद और प्रेरणादायक बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कला है।
0: बिल्कुल।
1: हमें संगीत का सम्मान करना चाहिए अंजलि जी, और इसकी मधुरता को अपने जीवन में अपनाकर स्वयं और समाज के कल्याण में योगदान देना चाहिए।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही कि संगीत का क्या महत्व है और इसे हमें क्यों अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और अब समय हो चला है हमारे कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे, ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है साथियों 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को।
1: नमस्कार
0: साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर ही 9460051234। तो दोस्तों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है इंजाम, गीत के बोल हैं सारे के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। इस गीत की फरमाइश करते हैं जाकिर मुलानी, सुमया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाहजी मुलानी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इससे बीच जुड़ना चाह रहे पंढरपुर सिटी से सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, प्रशांत सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। इस गीत की अनुरोध करता है उत्तराखंड से उमा शिया, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मिका, सृष्टि बन्ने, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बरेली से मोहम्मद यासिर अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी, शशिम अंसारी, महेनूर जी। इस गीत के अनुरोध करता है दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आपसे भी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8।

आइए श्रोता, आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है अनाड़ी, गीत के बोल हैं फूलों सा चेहरा तेरा। इस गीत की फरमाइश करता है बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति प्रसाद वर्मा, मुरली अमित जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडेतकर, शुभम वडेतकर, पन्नू जी वडेतकर। इस गीत के अनुरोध करता है रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी जी धाकड़। और भी श्रोता साथी जुड़नाचार्य भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ रहे रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। इसी बीच जुड़नाचार्य ही महाराष्ट्र से बड्डू लोहार पोपलगढ़, चंद्रगला पोपलगढ़, देवदास जी पोपलगढ़। भगपत से जुड़ रहे हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इस गीत के अनुरोध करता है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार जी। अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं प्रवीण, योगिता, प्रणाली और सार्थक जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं गंजडवारा से उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही जी। पंडितपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़की जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं फूलों सा चेहरा तेरा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्रजी शाह। इस गीत के अनुरोध करता है कोकाबलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल, नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रही अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि जंगेल, ओशिका जंगेल, अदिति और अंजलि जी जंगेल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से संतोष भाड़की, सुकन्या सुनियाना, सरिता जी भाड़की। इसे भी जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, योगेशपुरी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा और तुलसी जी गोस्वामी। मजनू का टीला से जुड़ रही कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहीजी मलिक। भागपत से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से शंकर सुमन, दिलीप जी। इस बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मैं हूँ खुशरंग हिना। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे मैं हूँ खुशरंग हिना। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है आँखें, गीत के बोल ही मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरू श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, आरुषि श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बुलबुल शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या जी शाहू। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सुप्रील जी धाड़ी। बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अभांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ मदनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। बिहार कॉलोनी दिल्ली से जुड़ रही हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधांची खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कभी कभी।
1: आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाकोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। गीत के बोल ही जिंदगी की बगिया महकेगी। इस गीत की फरमाइश करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नेटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लड्डू कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू और भाविका जी सिक्का, जाफराबाद से जुड़ना चाह रहे शुद्धाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार शरवत देशमुख, सानवी जी देशमुख और हर्षता जी। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम और अक्षय जी। बिहार से जुड़ रहे हैं फैसल इमाल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और प्रवीण जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीहू और दियाजी चौरासिया। आगरा से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया और अवीर जी चौरासिया। यूपी से जुड़ रहे हैं सूरी चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा चौरासिया, शिवानी चौरासिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जुमेब जी मुजावर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है हम हैं प्यार के राही। गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ में। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इजराज और नरगिस खातून छीन। पंजाब से जुड़ रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीविका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपुर पुरी, जयपाल जी यादव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजुडवारा से यासीन हाशमी, नवजा बेगम, तोसीफ और तोइनूर जी, कलीम अंसारी। कलानूर से जुड़ना चाह रहे नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा। रघुवीर नगर से जुड़ रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सूत रमेश शाहू। बिहार से जुड़ रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बक्सर से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से जुड़ रहे हैं राजे एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, निफरा नवाज, बेबी चाहत जी और सादिया। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा। गीत के बोल हैं चूड़ी मजाना देगी कंगन मजाना देगा। इस गीत की फरमाइश करता है फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार जी चंदन। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं दुर्गा कुलनी हांसी से, राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इस गीत के अनुरोध करता है नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ रहे सोपान और नारायण जी और आशीष महेकर जी। हरिद्वार से जुड़ना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी। दादरी गेट भवानी से जुड़ रहे हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं शिषपाल जी। सहारनपुर से जुड़ रहे हैं समेद मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी और अदीब जी। जोधपुर राजस्थान से जुड़ रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और बेबी बॉय हिमांश। बाबा कुटरी रायगढ़ से जुड़ रहे हैं शिव कुमार चौहान, आशीष चक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान और डुग्गू जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चूड़ी मजाना देगी कंगन मजाना देगा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल ही चूड़ी मजाना देगी, कंगन मजाना देगा। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटेल नगर मालोट से। फिल्म का नाम है वारिस। गीत के बोल ही मेरे प्यार की उम्र हो उतनी सनम। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, अर्जु जी झांझोरिया और गुड्डू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सूरी जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। इस गीत के अनुरोध करता है पत्रोड से विजय अंबटकर, सुनीता अंबटकर, अक्षय अंबटकर, राधिका अंबटकर, ऋषिकेश जी अंबटकर। कोलगांव से जुड़ना चाह रहे पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार, कुंभार गली कोलगांव से जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, किरण ठाकुर, शशि बल्ला, रेखा जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जॉन डिकिस्ट्रो, रोज डिकिस्ट्रो, पॉल डिकिस्ट्रो, विलेज डिकिस्ट्रो। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मेरे प्यार की उम्र हो उतनी सनम। फिल्म का नाम है वारिस। गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर होते हैं तो आपको आपके ही पसंदीदा नगमों से रूबरू करवाते हैं जो आप हमें भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। श्रोता साथियों, जैसा कि आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है नवाशहर से। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल हैं ओढ़नी ओढ़ के नाचू। इस प्यारे से गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश साधु, शिक्षा साधु, प्रतीक्षा साधु और मेक्स जी। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। नवाशहर से हैं गगनदीप थाटी, तिन्ना कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी जी, प्रशांत, डॉक्टर प्रामिका और वाणी थांडी जी। महाराष्ट्र से श्रोता साथी हैं सदैव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। मारवाड़ बिलड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी। छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओढ़ नहीं ओढ़ के नाचू। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था तेरे नाम फिल्म का, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। इसी गीत के बाद श्रोता साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है कुरावली से। फिल्म का नाम है साथियों भ्रष्टाचार। गीत के बोल हैं, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। इस गीत को आवाज़ दी है सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं कुरावली से अनिल कुमार वर्मा जी, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। इसी बीच और भी साथी कुरावली से ही जुड़ना चाह रहे हैं, पसंद करते हैं इसी गीत को, राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नवीन अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी जी। कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसीन काना अंसारी जी। इसी बीच श्रोता साथियों राहट गांव कैंप महारा अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे जी। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। इसी बीच जुड़ रहे हैं दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुनेश सुरेश जी, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहरितिक बलवीर सिंह जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: तुम भी गाओ।

अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, बताना चाहूँगी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आया है। फिल्म का नाम है साथियों मीरा का मोहन। गीत के बोल हैं तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी। फरमाइश करता भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखिलाल वर्मा। इसी बीच और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया जी। दोस्तों श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्के दले, जीविका दले, सानिका दले। पूना वाले पुड़े से अजय सोनवाने, करिश्मा अविका, शायसा सोनवाने, विशाखा मंगलकर जी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जिजल हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल हैं तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है साथियों राहुल नगर अमरावती से। फिल्म का नाम है आंधी। गीत के बोल हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चना ताई गोड़ा ने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि जी और भी हमारे दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी दोस्तों, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। डुमराव से वल्लीउल्ला अंसारी, अजमानाज अंसारी, शबनम बानो जी। बक्सर से एजिराज अंसारी, फातिमा नाज। दिल्ली से सोनम अदीबा जी और डॉक्टर अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी कुलथे जी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं बेबी सालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्र डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी। रायगढ़ बिहार से उमारा, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा, कमल उमा। खंडवा से राधिका, अनिता, सपना, राकेश ताई। रायगढ़ से निशा डोमिन, उमा डोमिन, जानवी डोमिन। सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव, नरेंद्र यादव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। ये जो चांद है ना, वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: नौ बरस लंबी।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। अगले फरमाइश का गीत है साथियों फजल का, पंजाब से आया है। फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं भूषण खेड़ा, विश्व खेड़ा, बिलाड़ी खेड़ा, शिलानशी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा जी। इसे बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रेमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। इसी बीच हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। साथियों राजकोट से हैं मधुसूदन भट्ट जी, आरती भट्ट, जस्मिन प्रयागराज भट्ट। इसी बीच महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं रूपेश संगे, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो।

0: उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो बस तुम रहते हो।
2: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आए हैं मुरादाबाद से साथियों। फिल्म का नाम है दूध का कर्ज, गीत के बोल हैं शुरू हो रही है प्रेम कहानी। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं माया देवी ऋतिक आदित्य खसाना जी। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। साथियों मलयाल सरदना मेरठ से हैं अनिल जैन, सैम जैन, जैन साहब जी, मुस्कान जैन, मास्टर टीवीएम जैन। राजस्थान हनुमानगढ़ से हैं विक्रम कटवासरा, सचिन कटवासरा, सतीश योगेश, युधव कटवासरा जी। कॉल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, साइन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपिसानी, अफजल मलिक जी। बोरखेड़ा पितरामल से हैं विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार जी, दीक्षा कुश मुड़त जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं धनौरी तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश, राशि राजेश, शिल्तर राजेश जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पुनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं शुरू हो रही है प्रेम कहानी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है सरगांव छत्तीसगढ़ से आया है। फिल्म का नाम है दोस्तों, गीत के बोल हैं काफिराना सा है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। खरगोन मध्य प्रदेश से हैं तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, सीमा वर्मा, अमित राज, समर आर्यन और एरिही ईशिका श्वेता वर्मा जी। वड़ेरी देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े। खानी बुलड़ा से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े। अमरावती से सुनैना, पवन भोंडे जी और तनुज जी। हरगांव महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे शंकर गिरबड़े, दिलीप गिरबड़े, कविता गिरबड़े। इसी बीच गंजूडवारा से जुड़ रहे हैं शमशुल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान जी। साथियों बिहार कॉलोनी दिल्ली से भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राधा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। साथ ही जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी झारखंड से अब्बास आलम, अमज अली और अमजद अली, निरशा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त। आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों छत्तीसगढ़ भटापारा से हैं छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वेदही जोशी, अंशिका जोशी, अंकिता जोशी, गफार डावर जी, जयवंती केवट जी। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ रहे हैं जो मनोरंजन इस गीत के साथ करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी महेश्वरी देवी जी, उमा सिंह जी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका शिष्टि, बन्नी आरुष, शौर्य, दिनेश जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं काफिराना सा है और फिल्म का नाम है केदारनाथ। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि हम इसी कार्यक्रम के साथ में विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुख करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा?
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं कि संगीत का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि संगीत मानव जीवन की सबसे सुंदर और प्रभावशाली कलाओं में से एक है, यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है श्रोताओं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति, मानसिक शांति और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।
0: जी जी,
1: संगीत मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। लोरी से लेकर भजन, लोकगीत, राष्ट्रगीत और शास्त्रीय संगीत तक हर स्वर जीवन को मधुरता और आनंद से भर देता है।
0: बिल्कुल,
1: संगीत व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और आत्मा को प्रभावित भी करने की अद्भुत क्षमता है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि शिक्षा, रचनात्मकता और मानसिक विकास में भी संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से बातें तो ढेर सारी करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में मनोरंजन हम उन्हें पहले करवाते हैं, तो आज भी शुरुआत में एक सुनते हैं प्यारा सा गीत यहाँ पर।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं संगीत के महत्व को लेकर, और जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत भी सुना श्रोता साथियों, आपको बताया था जैसा कि गीत से पहले कि संगीत जो है वो हमारे जीवन की सबसे सुंदर और प्रभावशाली कलाओं में से एक है, क्योंकि ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारी आत्मा को जोड़ने वाली एक अद्भुत शक्ति भी है। साथियों, हम देखते हैं जागृति जी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक संगीत ने समाज, संस्कृति और मानव जीवन को गहराई से प्रभावित किया है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में जब युवा साथी जो हैं वो पढ़ाई, प्रतियोगिता, रोजगार और सामाजिक चुनौतियों के बीच अनेक प्रकार के तनावों का सामना कर रहे हैं, तब संगीत उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला एक माध्यम बन चुका है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और जैसा कि हम संगीत के महत्व को लेकर बातचीत कर रहे हैं, संगीत यानी कि सुर, ताल और लय का सुंदर समन्वय।
0: बिल्कुल,
1: जब ध्वनियां निश्चित नियमों और भावनाओं के साथ प्रस्तुत की जाती है तब संगीत का निर्माण होता है। भारतीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन है और इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि भारतीय संगीत में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत और आधुनिक संगीत जैसे अनेक विधाएं शामिल है। संगीत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि मानव जीवन में संगीत एक विशेष स्थान रखता है। मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो संगीत उसके आनंद को बढ़ाता है। जब वो दुखी होता है तो संगीत उसे सांत्वना प्रदान करता है। श्रोता साथियों, संगीत जीवन की निरसता को दूर कर उसमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए कहा जाता है कि संगीत आत्मा की भाषा है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: इसकी मधुर ध्वनियां ही श्रोता साथियों सीधे हमारे मन को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि जब कोई युवा संगीत सुनते हैं या संगीत का अभ्यास करते हैं तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, यही कारण है कि संगीत को जीवन का एक अभिन्न अंग माना गया है। युवा हमारे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनकी सोच, ऊर्जा और रचनात्मकता देश के भविष्य को आकार देती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में दोस्तों संगीत आपके लिए व्यक्तित्व विकास, मानसिक संतुलन और भावनात्मक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि संगीत न केवल जागृति जी जीवन में आनंद बढ़ता है बल्कि ये युवाओं को अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ साथ संवेदनशीलता का गुण भी सिखाता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, चिंता और मानसिक दबाव आम समस्या बन गई है। ऐसे समय में संगीत जो है वो हमें मानसिक शांति देता है।
0: जी जी,
1: मधुर संगीत सुनने से हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा तनाव कम हो जाता है और सकारात्मक सोच हमारे अंदर विकसित होती है। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमने कई सारे शोधों में देखा है कि संगीत भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करता है।
0: बिल्कुल,
1: संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीत शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विद्यार्थियों की रचनात्मकता, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायता करता है।
0: जी जी,
1: संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास होता है, अनुशासन होता है और धैर्य जैसे गुण भी विकसित होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कशिश की विद्यालय में संगीत शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी एक अलग ही भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हमारे युवा साथियों से हम संगीत की कला को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो ये बातें हम आगे भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले संगीत के महत्व को लेकर, तो श्रोता साथियों, जैसा कि संगीत के महत्व को लेकर हम आपको बताए, तो युवाओं के जीवन में संगीत प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है।
1: बिल्कुल,
0: संगीत हमें तनाव से राहत देता है कशिश, और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अच्छे और प्रेरणादायक गीत हम युवाओं को सकारात्मक सोच देते हैं, बेहतर जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित भी करते हैं। हम कह सकते हैं कि संगीत के माध्यम से युवा अपनी प्रतिभा को पहचान सकते हैं और जीवन में नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं कि संगीत युवाओं के एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति संगीत सीखता है तो उसे सुर, ताल और लय पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। श्रोता साथियों, ये अभ्यास मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी मजबूत करता है। हम देखते हैं कि यही कारण है कि संगीत सीखने वाले कई विद्यार्थी पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। संगीत श्रोता साथियों, युवाओं में आत्मविश्वास का भी विकास करती है। जैसे कि जब कोई युवा मंच पर गीत प्रस्तुत करते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं जागृति जी, तो उनमें लोगों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का साहस बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे उनके अंदर का जो संकोच है वो इससे समाप्त तो होता है। और ये गुण श्रद्धा साथियों जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे युवा साथियों के लिए सहायक होता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि संगीत मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है। ये केवल कानों को मधुरता नहीं देता बल्कि मन को शांति, आत्मा को आनंद और जीवन को नई दिशा देता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि संगीत लोगों को जोड़ने, भावनाओं को व्यक्त करने और समाज में प्रेम सद्भाव फैलाने का कार्य करता है। हमें संगीत को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर जीवन के विकास और संतुलन का महत्वपूर्ण माध्यम समझना होगा श्रोताओं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा गया है कि जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। अपने जीवन में संगीत को स्थान दीजिए, क्योंकि मधुर सुर केवल कानों को नहीं बल्कि पूरे जीवन को भी सुंदर बना देते हैं।
1: जी हाँ, युवा साथियों, संगीत भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। कई बार हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन संगीत के माध्यम से हम अपनी बात आसानी से व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि खुशी, दुख, उत्साह, प्रेम, आशा और प्रेरणा जैसी जो भावनाएं होती है वे संगीत के जरिए सुंदर रूप में सामने आती है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, संगीत से सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब हमारे युवा साथी किसी संगीत समूह, बैंड या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो वे टीम भावना और सहयोग की भावना को सीखते हैं। इससे दोस्तों उनके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और वे समाज के साथ बेहतर तरीके से जुड़ भी पाते हैं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि संगीत केवल सुर और तालों का मेल नहीं है बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली एक अद्भुत शक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: ये दुखी मन को आशा देता है, थके हुए व्यक्ति को नई ऊर्जा देता है और निराशा के अंधकार में आशा का दीपक जलाता है। संगीत हमें संवेदनशील बनाता है श्रोताओं, हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा देता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा सच्चा साथी बनकर साथ निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज जब दुनिया भाग दौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है कशिश, तब संगीत ही मनुष्य को अपने भीतर झांकने और स्वयं से जुड़ने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि जैसे एक मधुर धुन कई स्वरों के मेल से बनती है, वैसे ही जीवन की सफलता भी धैर्य, परिश्रम और अनुशासन, साथ ही सकारात्मक सोच के समन्वय से प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में संगीत सीखना पहले की तुलना में अधिक आसान हो चुका है। जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और डिजिटल माध्यमों के जरिए श्रोता साथियों, हम घर बैठे ही संगीत सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी कला को निखारने के लिए अवसर प्राप्त हो रहे हैं जागृति जी। और संगीत के क्षेत्र में आज रोजगार के भी अनेक अवसर उपलब्ध हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि गायक, संगीतकार, संगीत शिक्षक, रिकॉर्डिंग विशेषज्ञ, रेडियो जॉकी, कार्यक्रम संचालक, और दोस्तों ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां युवा अपना करियर बना रहे हैं। इस प्रकार संगीत केवल एक कला नहीं बल्कि रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि युवाओं को संगीत से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संतुलन, रचनात्मकता और आत्मविश्वास विकसित करने होंगे। श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि संगीत हमें संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में उम्मीद है और हौसला जीवित है तो जीवन की हर चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।
1: जी जी,
0: जिस प्रकार कशिश एक छोटा सा स्वर पूरे गीत को सुंदर बना देता है, उसी प्रकार एक सकारात्मक विचार पूरे जीवन को भी बदल देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, हम संगीत को केवल मनोरंजन का साधन न माने बल्कि इसे जीवन को बेहतर बनाने, समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाने तथा मानवता को जोड़ने का माध्यम बनाए। जब हमारे जीवन में संगीत के सुर गूंजेंगे तब हमारे विचारों में मधुरता आएगी, व्यवहार में विनम्रता आएंगे, कर्मों में सकारात्मकता स्वतः ही दिखाई देगी। इसीलिए कहा भी गया है कशिश कि संगीत से सजता है जीवन का हर राग, यही है खुशियों, शांति और सफलता का सुरीला मार्ग। तो श्रोता साथियों, सुरों की शक्ति को पहचानिए, जीवन को मधुर बनाइए, संगीत को अपनाइए और खुशियां और सफलता की नई धुन गुनगुनाइए।
1: बिल्कुल, इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अब जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे जागृति जी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज से हम विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि संगीत केवल सुरों और धुनों का मेल नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की एक कला है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि जैसे अलग अलग सुर मिलकर मधुर संगीत बना सकते हैं, ठीक वैसे ही धैर्य, मेहनत और अनुशासन जैसे गुण मिलकर एक सफल जीवन का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में याद रखिए कि हर युवा के भीतर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी हुई होती है। संगीत उस प्रतिभा को निखारने और दुनिया के सामने लाने का एक सुंदर माध्यम है। श्रोताओं,
1: जी हाँ,
0: जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब संगीत बोलता है, और जब मन थक जाता है तब संगीत उसे फिर से जीना सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: और यही संगीत की सबसे बड़ी शक्ति है। जागृति जी,
1: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा हम जरूर लेंगे, पर जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को हम पता बताना चाहेंगे ताकि उनको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए वो अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागल रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम में बातचीत का विषय है कि बच्चों में हम कैसे जगाएं मदद करने की नजरिए को।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि कहा जाता है कि बच्चे देश और दुनिया का भविष्य होते हैं और आने वाली नई पीढ़ी ही राष्ट्र और समाज के भविष्य का निर्धारण करती है।
0: जी बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बच्चे बताने से ज्यादा आसपास के माहौल को देखकर सीखते हैं, साथ ही उन्हें बचपन से ही सही तरीके से समझाने की जरूरत होती है।
0: जी हाँ,
1: बचपन से ही उनमें त्याग, ममता, प्यार, अनुशासन और प्रगति की शिक्षा देनी होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: साथ ही उन्हें यह भी सिखाना पड़ता है कि एक दूसरे की मदद करके ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि त्याग, सद्भावना, ममता जैसे गुण एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करते हैं, जो न सिर्फ उनके बल्कि देश के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: ऐसे में दोस्तों ये बेहद जरूरी है कि बच्चों को सही संस्कार और शिक्षा दी जाए, उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व पाने में मदद की जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो आज कार्यक्रम में कशिश हम यही जानेंगे कि कैसे हम हमारे बच्चों के अंदर कुछ ऐसे गुण डालें जिससे उनके जीवन में उन्हें ढेर सारे फायदे हो पाए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो उन्हीं फायदों को लेकर आज हम दोस्तों से कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी भी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्त को गीत सुनवाएं हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें बच्चों में जगानी होगी मदद करने के नजरिए को।
1: जी बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, अगर आपको बताएं तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को अच्छी बातें सिखानी होंगी। यानी कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को हर मानवीय गुण सिखाने की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने मन, वचन और कर्म से दूसरों की मदद करना। और हमेशा यह देखा भी गया है अंजलि जी कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कम तनाव रहता है।
1: जी हाँ।
0: मानसिक शांति और आनंद का वे लोग अनुभव करते हैं। श्रोताओं, वे अपने स्वयं अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और उनका जो जीवन है वो भी सुखमय तरीके से बीतता है।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि हमें बच्चों को उन लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है जो हर समय उनके साथ रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जिनके साथ बहुत गहरा उनका लगाव होता है। जैसे घर में बूढ़ी दादी को बीमारी की हालत में बच्चे के हाथ से दवा खिलाई जा सकती है।
0: हाँ।
1: जिससे वह दूसरों की मदद करना सीखेगा और बड़ों का सम्मान करना भी सीखेगा।
0: बिल्कुल। साथ ही हमें बच्चे को चीजों को बांटना भी सिखाना चाहिए। जब वे अपने बड़ों को ऐसा करते हुए देखते हैं अंजलि जी, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में इस आदत का विकास हो सकता है।
1: जी हाँ।
0: श्रोताओं, अगर वो आपको लालच करते हुए देखेगा तो ये आदत वो कभी नहीं सीख पाएगा। आज के दौर के छोटे बच्चों को देखा जाता है अंजलि जी कि वे अपनी चीजें या फिर खिलौने इन सभी को शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: श्रोताओं, ऐसा उनके ज्यादातर अकेले रहने और सामाजिक न होने के कारण अधिक होता है। ये उनके भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है अंजलि जी। तो साथियों, हमें अपने बच्चों के सामने उनके साथ चीजें बांटना उन्हें सिखाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि इस मामले में माता पिता दोनों की अहम भूमिका होती है, खास तौर पर पिता की। पिता होने के नाते आपको अपने बेटे को कई जरूरी बातें सिखलानी होंगी।
0: हाँ।
1: और एक बढ़ता हुआ बेटा अपने पिता से बहुत कुछ सीखता है, इसलिए उसे अच्छी चीजें सिखाने के लिए खुद भी उसके सामने अच्छी चीजों के उदाहरण पेश करें। उन्हें सिखाएं कि परिवार में कब और किसे आपकी जरूरत होती है और इसे कैसे समझा जाए। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, ये भी हमें उन्हें सिखाना है।
0: बिल्कुल।
1: अक्सर हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी अन्य स्थान पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं कशिश, तो बहुत खुशी होती है। तो जब आप बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इस दौरान अगर कोई गर्भवती महिला या बुजुर्ग खड़ा है तो उसे अपनी सीट दें और फिर अपने बच्चे को भी बताएं कि आपने उनकी मदद क्यों की है। आपको भी मौका आने पर ऐसे ही करना है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल। इसी के साथ हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए साथियों कि उसे उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो बीमार हो।
1: जी हाँ।
0: अशक्त हो, तकलीफ में हो। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो किसी भारी बोझ को उठाने या फिर किसी कठिन काम से जूझ रहा है तो हमें उसका बोझ हल्का करने के लिए आगे आना चाहिए साथियों।
1: जी बिल्कुल।
0: साथ ही अगर आपको बताएं तो हमें धर्म की जो संस्थाएं होती है वहां पर दान भी देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी बात होती है। आप इसके लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं श्रोता साथियों, क्योंकि बच्चों को इस दिशा में उसकी झिझक छुड़वानी चाहिए आपको।
1: जी हाँ।
0: साथ ही बच्चे को गरीबों और जरूरतमंदों का सम्मान करना भी आपको सिखाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। ये बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही आगे बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।

मिले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में कशिश बहुत अच्छी बातें चल रही है, गीत से पहले हम जान रहे थे कि किस तरीके से हम हमारे बच्चों के अंदर मदद करने की भावना का विकास कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, कुछ बच्चों के पास कुछ असाधारण क्षमताएं होती है, उसकी क्षमताओं को हमें जानना है। आप उसे बचपन से ही मार्शल आर्ट की ओर ले जा सकते हैं, जिससे आगे चलकर वह स्वयं व दूसरों की मदद कर सके।
1: बिल्कुल,
0: उसे आप ऐसी फिल्में दिखा सकते हैं जिससे उसे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिले। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप अपने बच्चों के अंदर दूसरों की मदद करने का भाव डालते हैं तो बड़ा होकर उसका जीवन सुख में बीतेगा।
1: बिल्कुल,
0: दूसरों की मदद के कारण उसका सामाजिक दायरा बड़ा होगा, उसकी भी मदद करने वाले लोगों की संख्या बड़ी होगी।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी श्रोताओं, एक माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि जो बच्चे असाधारण होते हैं उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: यानी कि अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में अगर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे असाधारण बच्चे उन्हें देखने को मिलते हैं।
0: जी जी,
1: और वो ये गलती कर देते हैं कि वो दूसरों के बच्चों की तुलना में उस बच्चे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो हमें अपने बच्चे को ये बताना चाहिए कि ये गलत बात है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें अब हमारे श्रोता साथियों से कि दूसरों की मदद करना हम हमारे बच्चों को कैसे सिखाएं। तो एक प्यारी सी कहानी है जो हम हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक बार की बात है, रोहित नाम का एक छोटा लड़का था। वो एक गरीब परिवार से था कशिश। वह एक दिन लकड़ी लेकर जंगल से गुजर रहा था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा जो कि भूख से मर रहा था।
1: बिल्कुल,
0: रोहित ने उसे खाना खिलाना चाहा था लेकिन उसके पास खुद के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। नतीजन वह अपनी यात्रा जारी रखता है। अपनी यात्रा के दौरान वह एक प्यासे हिरण के पास आया कशिश। वह उसे कुछ पानी देना चाहता था लेकिन वह नहीं दे सका क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह अपनी यात्रा फिर से जारी रखता है।
1: बिल्कुल,
0: तभी उसकी नजर कशिश एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अपना डेरा डालना चाहता था लेकिन उसके पास लकड़ियां नहीं थी। रोहित ने उसकी हालत के बारे में पूछा और उसे कुछ लकड़ियां दी। उसने बदले में उसे कुछ खाने पीने की चीजें दी। वह वापस उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उसे खाना खिलाया, साथ ही हिरण को भी कुछ पानी पिलाया। हिरण और बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही खुश हुए। रोहित फिर से खुशी खुशी अपनी यात्रा जारी कर रहा था। दूसरी ओर रोहित एक दिन ढलान से नीचे फिसल गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था।
1: जी हाँ,
0: जब उसने पहले जिस बूढ़े व्यक्ति की मदद की थी उसने उसे देखा तो वह तुरंत उसके पास गया और उसे ढलान पर खींच लिया। उसके पैर घाव से भरे हुए थे। जब रोहित ने जिस हिरण को पानी पिलाया उसने उसके घाव को देखा तो वह जंगल की ओर भागा और कुछ पौधे लेकर लौटा। कुछ समय बाद उसके घाव भर गए। वे सभी खुशी थे कि वे एक दूसरे की मदद कर पाए।
1: जी हाँ,
0: तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो सब आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जब हमें जरूरत होती है कशिश, तो जो दूसरों को हम प्यार देते हैं, सहायता देते हैं, वह निसंदेह हमें 10 गुना वापस मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें बच्चों को ये सारी चीजों को सिखाना है कि दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें खुशी मिलती है बल्कि इससे आपको भी खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमें बच्चों को ये भी बताना है कि मदद करने के बाद आपके मन में अद्भुत भावना होती है। मदद सबसे अच्छे इरादे से की जानी चाहिए। जब आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो आपको दूसरों से समर्थन पाने में मदद मिलनी चाहिए क्योंकि इससे आपको सुखद महसूस होता है, आपका जो जीवन है वो भी खुशहाल बना रहता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है कि अगर हम बचपन से ही बच्चों के अंदर मदद की भावना, इसी के साथ शेयरिंग की जो भावना है वो अगर डालेंगे तो देखते हैं कि बच्चों का जो जीवन है वो आगे चलकर बहुत ही अच्छा होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और गीत।
0: जी बिल्कुल,
2: चकरा का चीचा

0: दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से मदद करने की भावना सिखानी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ।
1: हमारा

0: फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलिनु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनों घणे मान स्वागत कर रहा हूँ अमारे आज कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथी। तो भाई बहनों आज हमारी कार्यक्रम में अब तक की बातचीत का विषय है कि सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम हूँ कहवाए है न्यानो हूँ महत्व है। तो अना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी अब तक की घना खनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बहनों आप हमारे रहसू आपू रेडियो अपनी बातें वाक रेडियो 90.8 FM।

0: બેન્ડ બોનું ગીત તો અહીં શું પૂર્ણ અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણેમાન સ્વાગત કરા હું અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે આપને ગીત કે પહેલે અમે વિષય ઉતાર્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે સામુદાયિક વન અધિકાર અધિનિયમ હું કહેવાય ને આનું હું મહત્વ હૈ તો અણ વિષય માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મનીષજી સર તો સપ્તાહ કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્તે અંજલી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है सामुदायिक वन अधिकार को लेकर आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि ये वन अधिकार क्या है और इनका हमारे समुदाय साथियों के जीवन में क्या महत्व है
1: बिल्कुल सामुदायिक वन अधिकार की जब हम बात करते हैं तो सामुदायिक वन अधिकार जो हमें मिलता है वो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये मिलता है
0: बिल्कुल
1: इसके अंतर्गत दो तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं तो पहला इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि वन अधिकार अधिनियम जो बनाया गया तो जंगल से संबंधित जो कानून बने थे पुराने समय में तो इसको बनाने के पीछे सरकार की मंशा यही थी कि परंपरागत रूप से जो आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजातियां या अन्य परंपरागत निवासी जो वहां पे निवास तो कर रहे हैं पर उनको उनके हक मिल नहीं पाए या जिस पे उनका हक है वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है
0: जी जी
1: तो इसी के लिए जो है इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी
0: बिल्कुल
1: तो इसका यदि पूरा नाम हम बताना चाहेंगे तो इसका नाम है अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत निवासियों यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है क्योंकि ये 2005 में पास हुआ और 2006 में ये पूरे भारत में राज्यों में समान रूप से लागू कर दिया गया
0: जी जी बिल्कुल
1: इसी कारण इसको वन अधिकार अधिनियम छोटे रूप में 2006 बोलते हैं तो ये अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था जैसा कि हमने बात की ताकि आदिवासी समुदायों और अन्य परंपरागत निवासियों को उनके पारंपरिक वन भूमि
0: जी जी
1: और संसाधनों पर अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी जा सके तो अब इसमें भी हम जैसे देख रहे हैं कि वन भूमि और संसाधन
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे दो चीजें ये हैं कि एक इसमें जो है व्यक्तिगत रूप से भी आपको वन भूमि पे पट्टे दिए जाते हैं जिससे आप अपनी आजीविका उपार्जन में उपयोग कर सकते हैं
0: बिल्कुल
1: और दूसरा होता है संसाधनों पर अधिकार तो संसाधनों के अधिकार की जब हम बात करते हैं तब यहाँ सामुदायिक वन अधिकार की बात आती है तो आपके क्षेत्र का जो पूरा जंगल है आपके गांव में या पंचायत की सीमा में आने वाला और वो भी पारंपरिक
0: जी जी
1: हो सकता है अब उनकी सीमाएं बदली हों तो कानून कहता है कि पारंपरिक रूप से जो भी जंगल का हिस्सा उनके रीति रिवाज मान्यताओं या धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता था उसकी जो पारंपरिक सीमा है वो उतनी वन भूमि का अधिकार उनको पाने का हक है और वो कानूनी रूप से उनको मिलेगी तो इसकी एक प्रक्रिया होगी
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा तो अब यही हम जानना चाहेंगे कि सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से इसमें दस्तावेज और अन्य चीजों का प्रयोग किया जाता है
1: देखिए सबसे पहले हम यदि पंचायती राज अधिनियम की भी बात करें तो ग्राम सभा को जो है सबसे बड़ा माना गया है
0: बिल्कुल
1: यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में ये कहा है कि राज्यसभा और विधानसभा से भी ऊपर ग्राम सभा है
0: बिल्कुल
1: तो ग्राम के सर्वोत्तम हित में लिए गए निर्णय ग्राम सभा की ओर से वो मान्य होंगे और यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने उनके विरुद्ध गलती से कोई नियम या कानून बना दिए गए हैं तो ग्राम सभा के निर्णय को वो कानून काट नहीं सकते
0: बिल्कुल
1: तो ग्राम सभा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है तो इसमें जो शुरुआत होती है वो ग्राम सभा से ही होती है
0: जी जी
1: तो सबसे पहले जो है ग्राम सभा का आयोजन होता है और आयोजन में ये तय होता है कि सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करने की मुख्य प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ होती है
0: बिल्कुल
1: तो ग्राम सभा सामुदायिक वन अधिकार का दावा देने के लिए एक समिति का गठन करती है
0: बिल्कुल
1: जिसे वन अधिकार समिति कहते हैं जिसमें 10 से 15 सदस्य होते हैं, उसमें कम से कम एक तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो समिति दावा प्रपत्र अनुसार सभी दस्तावेज एकत्र कर जो ग्राम सभा है वो सामुदायिक वन अधिकार दावा जो है तैयार करेगी। इसके बाद बात आती है कि दस्तावेज इसमें क्या क्या लगेंगे। तो दस्तावेजों में एक तो होता है पारंपरिक वन उपयोग का नक्शा, यानी कि वो नजरी नक्शा हो सकता है
0: जी जी,
1: जो वहाँ के बुजुर्ग बोलते हैं कि ये यहाँ तक हमारा था, यहाँ हमारा मंदिर था, या यहाँ पुराने समय में कोई तालाब था, तो ये हमारे गांव की सीमा में आता था।
0: जी
1: हो
0: जी
1: सकता है गांव बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से अब उनको अलग गांव के नाम से पुकारा जाने लगा हो, तो वो नजरी नक्शा होता है। एक और नक्शा होता है जिसको GPS मैप बोलते हैं, और तीसरा नक्शा होता है जो वर्तमान में वन विभाग के पास में उपलब्ध होगा कि उनके अनुसार उस गांव की सीमा का जंगल कहां तक है। तो पर यहां पे हम बात कर रहे हैं पारंपरिक वन उपयोग का नक्शा जो उनके बुजुर्गों के अनुसार नजरी नक्शा होगा।
0: बिल्कुल।
1: इसके बाद वन उत्पाद संग्रह, तो जंगल में जो जो मिलने वाले वन उत्पाद हैं है ना, लकड़ी को छोड़ के, लकड़ी का भी जो है एक अपना कानून है जिसमें निस्तार का हक जो है उस ग्रामवासियों को जो है दिया जाता है, तो उसके लिए अलग से जो है नियम है। तो उत्पाद संग्रह की बात हो गई, जैसे टिमरू हुआ, महुआ हुआ, बेहड़ा हुआ, या अन्य और कोई उत्पाद होंगे जैसे गोंद होता है, तेंदुपत्ता होता है, तो इस तरह के वन्य उत्पाद। धार्मिक स्थलों, जल स्रोतों के उपयोग का विवरण, तो इन सभी का जो है विवरण उसमें दर्ज करना है। इसी के साथ इसमें स्थानीय लोगों के जो है हस्ताक्षर, कुछ हलफनामे यानी कि बुजुर्गों के कथन और उनके फोटो लगेंगे जो ये बताते हैं कि पारंपरिक रूप से उनके वन उपयोग में ये चीजें थी। हो सकता है उसमें से वर्तमान में कुछ कम हो गई हो।
0: बिल्कुल।
1: और पारंपरिक प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाण कि किस तरह से वो अपने जंगल का प्रबंधन करते थे जिससे वो उनका उपयोग उपभोग दोनों करने के बावजूद भी जंगलों को किसी तरह से जो है नुकसान नहीं होता था और वो उसी तरह उतने ही सुंदर रूप में खड़े रहते थे।
0: बिल्कुल सर।
1: जब हमने ग्राम सभा का गठन कर लिया, हमने समिति का निर्माण कर लिया, हमने दावा तैयार कर लिया, दस्तावेजों का संकलन कर लिया, तो अब दावा प्रस्तुत करने की बारी आती है। तो तैयार दावा ग्राम सभा में चर्चा कर पारित किया जाता है, यानी कि उस गांव के सभी लोग जो ग्राम सभा में उपस्थित हैं वो इन सारी चीजों को एक बार देखते हैं, उसकी सीमाओं को देखते हैं कि कहीं इसमें कोई जगह छूट तो नहीं गई या कोई जगह हमने ज्यादा तो नहीं ले ली।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसी कोई स्थिति होती है तो फिर जो पड़ोसी गांव हैं उनकी समितियों के साथ या उनके ग्राम सभा के साथ में बैठ के उस पे चर्चा की जाती है। तो ये ग्राम सभा में पारित हो गया, इसके बाद में जो है ग्राम सभा इसको अनुमोदित करके उपखंड स्तरीय समिति होती है उसको भेजती है। उपखंड स्तरीय समिति के द्वारा जो है इसकी जांच होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो वन अधिकार समिति जो होती है उपखंड स्तरीय, इसमें राजस्व और वन विभाग जो होते हैं वो इनकी मदद करती है भौतिक या जमीनी सत्यापन के लिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हो सकता है आपने जब दावा किया तब वनों की सीमा कहीं और थी, राजस्व की सीमा कहीं और थी, तो इन दोनों विभाग के अधिकारी भी उनकी मदद के लिए उस समिति के साथ में होते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: यदि आवश्यक हो तो दावेदारों से और जानकारी भी मांगी जा सकती है। यानी कि जांच के दौरान उपखंड स्तरीय समिति को लगता है कि आपके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं ये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वो पर्याप्त साक्ष्य के लिए आपको एक सूची बना के देंगे, उस सूची के अनुसार वो साक्ष्य हमको वापिस उपलब्ध कराना होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब उपखंड स्तरीय समिति उस दावे का अनुमोदन कर देती है तो उसको जिला स्तरीय समिति को भेज दिया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अनुमोदन के लिए। अब जिला स्तरीय समिति का इस पे निर्णय होता है, तो जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर जो है पदेन कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं और जिला समिति का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। तो स्वीकृत दावों के लिए अधिकार पत्र जारी कर दिया जाता है, यानी कि उन संसाधनों पे उस गांव की ग्राम सभा को उसका अधिकार दे दिया जाता है
0: जी,
1: जिसे टाइटल डीड बोलते हैं।

0: ये अधिकार सामूहिक रूप से ग्राम सभा को दिया जाता है।
1: जी हाँ।
0: इसके बाद जो ग्राम सभा है वो तय करती है कि किस तरह से जो है उनको इनका प्रबंधन करना है, संरक्षण करना है, पुनरुद्धार करना है, ये सारा जो है वो ग्राम सभा तय कर सकती है और उनके अनुसार वो उसके सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
1: बिल्कुल।
0: तो वन अधिकार पत्र का वितरण और प्रबंधन यहाँ से जो है वितरण के बाद शुरू हो जाता है। तो ग्राम सभा सामुदायिक वन अधिकार मिलने के बाद उनके प्रबंधन में पारंपरिक और सामूहिक तरीकों से अपने निर्णय लेगी।
1: बिल्कुल सर।
0: यदि हम देखें इसमें कि क्या चीजें हो सकती हैं, तो जैसे लघु वनोपज का उपयोग या तो वो खुद करें या खुद करें और ज्यादा होने पे उसका विक्रय करें।
1: बिल्कुल।
0: जल स्रोत हैं, जल स्रोतों से भी कई प्रकार के जो है आजीविका के संसाधन उपलब्ध होते हैं या जल स्रोतों का विकास भी इसमें शामिल हो सकता है। कुछ चारागाहों और धार्मिक स्थलों का भी हो सकता है कि वो निर्माण करें या उनका पुनरुद्धार करें। वनों का संरक्षण और पुनरुद्धार इसमें स्वाभाविक रूप से शामिल है। और इसके अलावा उनको जो अपने गांव के और उस जंगल के विकास के लिए जरूरी लगता है उस तरह के वो निर्णय ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो अंत में यदि हम बात करें कि वन अधिकार अधिनियम संबंधित जो है समितियां, तो एक हो गई आपकी ग्राम सभा।
1: जी हाँ।
0: जो पूरे गांव के लिए निर्णायक होती है। उसके बाद पंचायत स्तर पे होती है वन अधिकार समिति। इसके बाद उपखंड स्तरीय समिति जिसमें तहसील या ब्लॉक पे हो सकती है। और अंत में होती है जिला स्तरीय समिति।
1: बिल्कुल।
0: इन समितियों के ऊपर भी दो समितियां हैं जहां आवश्यकता होने पे आप अपनी अपील कर सकते हैं। तो वो राज्य स्तर पे होती है और एक केंद्र स्तर पे होती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि सामुदायिक वन अधिकार क्या है और किस तरीके से इसमें हमें दावा प्रारंभ करना होता है, दस्तावेज भेजने होते हैं, फिर दावे को प्रस्तुत करना होता है और किस तरीके से अलग अलग समितियां बनाई गई हैं वो इन पर निर्णय लेती हैं और किस तरीके से हमारे जो भाई बहन हैं वो इसका पारंपरिक या सामूहिक रूप से संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि प्रबंधन कर सकते हैं। यही सर, आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, हम अगर बात करें वन अधिकार की, तो हमारे जो भी क्षेत्र हैं जो आदिवासी बहुल हैं और ये पूरी तरह से जो है वनों पे निर्भर है।
1: बिल्कुल।
0: आज की समय में जो आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं वो जब नहीं थी तो हमारे आदिवासी समुदाय में वनों का बहुत महत्व था। यानी कि यदि आजीविका की बात करें तो एक वर्षा आधारित खेती होती थी जिसके बाद उनके पूरे साल की आजीविका में वन बड़ा महत्व रखते थे।
1: बिल्कुल।
0: वो उनको उनके पशुधन के लिए भी जो है भोजन उपलब्ध कराते थे, उनके लिए भी भोजन उपलब्ध कराते थे और अनेक तरह की जड़ी बूटियां, अनेक तरह की लकड़ियां जो विशेष रूप से विशेष अवसरों पे और कई विशेष चीजों में प्रयोग की जाती हैं। इसी तरह से जो है वहां पे पाए जाने वाले पशु पक्षी वो उनकी आजीविका में जो है बड़ा सहयोग प्रदान करते थे। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो 70% जो आजीविका का संसाधन आदिवासी समुदाय का था और आज भी अगर वो होंगे तो वापिस वो उसकी तरफ लौटेंगे, तो 70% उनका जीवन जो है वो आजीविका के लिए वनों पे निर्भर करता है, जंगलों पे निर्भर करता है। तो वन अधिकार अधिनियम जब आया तो हम बोल सकते हैं कि ये सामुदायिक सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपनी खोई हुई चीजों को वापिस पा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सामुदायिक वन अधिकार से पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन जो है वापिस तुलनात्मक रूप से जो है संतुलन में लाना हम संभव होता देख सकते हैं। और ये बात बिल्कुल नई नहीं है कि समुदाय की भागीदारी से ही विकास संभव है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: જેમ કે ભાઈ બોનું આપણે આપણા વ્યાસમાં મનીષજી જોડતા હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા કાની વાત બતાડી હે. આશા કરા હો કે આ હંગરી વાત આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું. તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીત ને મારે પડા સૂટા.

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं श्रोता साथियों हम कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है डेमोग्राफी की। अच्छी समझ के बिना हम समस्या नहीं सुलझा सकते। अंजलि, अगर डेमोग्राफी की बात करें तो श्रोता साथियों, सरल शब्दों में कहें तो डेमोग्राफी समाज का वो आईना है, जैसे कि जब भी हम बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संकट या पर्यावरण जैसी समस्याओं की बात करते हैं तो हम अक्सर समाधान खोजने लगते हैं अंजलि।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है श्रोताओं कि इन समस्याओं से प्रभावित लोग कौन हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी उम्र क्या है और वे कहाँ रहते हैं और उनकी वास्तविक जरूरत क्या है, और यहीं से डेमोग्राफी की शुरुआत होती है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे डेमोग्राफी के बारे में, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है डेमोग्राफी को लेकर, कि डेमोग्राफी की अच्छी समझ के बिना हम समस्याएं नहीं सुलझा सकते।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि डेमोग्राफी आखिरकार है क्या, तो श्रोता साथियों, इसका मतलब है किसी समाज की जनसंख्या की संरचना, विशेषताओं और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन डेमोग्राफी होता है। जैसा कि श्रोता साथियों, उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो यदि हमें यह जानना हो कि भारत के युवाओं की संख्या कितनी है, कितने लोग रोजगार की उम्र में हैं या आने वाले वर्षों

0: में बुजुर्गों की संख्या कितनी बढ़ेगी, तो ये जानकारी डेमोग्राफी के माध्यम से प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल,
0: डेमोग्राफी वह विज्ञान है जागृति जी, जो लोगों की संख्या, संरचना और उनके बदलावों का अध्ययन करता है।
1: जी हाँ अंजलि, जैसे कि हम डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो डेमोग्राफी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि समाज की वास्तविक तस्वीर भी है। ये हमें बताती है कि आज समाज कहाँ खड़ा है और भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना है। यदि किसी डॉक्टर को मरीज की सही बीमारी का पता न हो तो वो इलाज कैसे करेगा। ठीक उसी प्रकार श्रोता साथी, यदि सरकार और समाज को लोगों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं होगा तो समस्याओं का समाधान भी अधूरा रह जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि समस्याओं को समझने की पहली सीढ़ी क्या है। तो श्रोता साथियों, हर समस्या लोगों से जुड़ी होती है, इसलिए लोगों की स्थिति को समझे बिना समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले डेमोग्राफी का यही नियम होता है कि हमें ये जानना है कि समस्या क्या है, और समस्या को समझकर और लोगों से जुड़कर उनकी बातों को जानकर ही हम उसका समाधान निकाल सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, जैसे कि समस्याओं को समझने की पहली सीढ़ी को लेकर हम बात करते हैं, तो श्रोता साथियों मान लीजिए किसी शहर में स्कूल की कमी है। यदि ये पता ही नहीं होगा कि वहाँ कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है और अगले 10 वर्षों में बच्चों की संख्या कितनी पड़ेगी अंजलि, तो नए स्कूलों की योजना हम कैसे बना पाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो वहाँ रोजगार और कौशल विकास की भी आवश्यकता अधिक होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्तों डेमोग्राफी हमें बताती है कि किस वर्ग की जरूरतें सबसे अधिक है और किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ बात आती है बेरोजगारी की समस्या की। तो आज हम देखते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बेरोजगारी। लेकिन रोजगार योजना बनाने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि कितने युवा काम करने की उम्र में हैं, उनकी शिक्षा क्या है और उनके पास कौन कौन से कौशल है।
1: बिल्कुल,
0: ये जानकारी नहीं होगी तो रोजगार योजना केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी। उदाहरण के तौर पर बात करें जागृति जी, तो युवाओं की संख्या और उनकी क्षमता को समझे बिना रोजगार की समस्या हल नहीं हो सकती। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि किस वर्ग के युवा बेरोजगार बैठे रहते हैं और किस तरीके के युवा को रोजगार मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमें चीजें करने की जरूरत है। जब तक जानकारी का अभाव रहेगा तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान तभी संभव है जब हमें ये पता होगा कि कितने लोग काम करने की उम्र में, जैसा कि अभी आपने बताया। श्रोता साथियों, डेमोग्राफी हमें श्रम शक्ति की वास्तविक स्थिति बताती है और इसी आधार पर रोजगार मेलों, कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की स्थापना, ये सारी योजनाएं बनाई जाती है। और यदि जनसंख्या की संरचना को समझे बिना रोजगार योजना बनाई जाएगी तो उनका लाभ सीमित रह जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि इन्हीं सब चीजों के साथ में शिक्षा की योजना भी शामिल होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अगर जागृति जी मान लिया जाए कि किसी जिले में बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, अगर सरकार को इसका अनुमान ही नहीं होगा तो वहाँ पर्याप्त स्कूल, शिक्षक और साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: उसका परिणाम ये होगा श्रोता साथियों कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसलिए कहा गया है कि जनसंख्या की सही जानकारी ही शिक्षा की मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है, लेकिन शिक्षा की योजना बनाते समय ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने बताया कि कितने बच्चे स्कूल जाने की उम्र में है। श्रोता साथियों, डेमोग्राफी के माध्यम से शिक्षा की वास्तविक जरूरतों को समझा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम डेमोग्राफी को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि डेमोग्राफी क्या है और किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में इसकी समस्या देखने को मिलती है अगर हमारे पास जानकारी का अभाव रहता है तो।
1: बिल्कुल।
0: अगर यही स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो श्रोता साथियों, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो किसी भी क्षेत्र में अगर बुजुर्गों की संख्या अधिक है तो वहाँ वृद्धजन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होगी। यदि बच्चों की संख्या ज्यादा है तो टीकाकरण और पोषण कार्यक्रमों की जरूरत होगी। जागृति जी, इसका सीधा सा मतलब यही है कि स्वास्थ्य योजनाएं भी जनसंख्या की संरचना पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ अगर हम बात करें शहरीकरण और आवास की समस्या को लेकर तो आज बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं, इससे शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि ये अनुमान न लगाया जाए कि आने वाले वर्षों में कितने लोग शहरों में बसेंगे तो आवास, पानी, बिजली, सड़क और परिवहन की व्यवस्था भी प्रभावित होगी।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, डेमोग्राफी शहरी विकास की योजनाओं को सही दिशा देती है और इसके माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा और इसका असर पर्यावरण और जनसंख्या पर भी पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: जल, जंगल, जमीन सीमित है। यदि जनसंख्या की जरूरतों और संसाधनों के बीच संतुलन नहीं बनाया गया श्रोता साथियों तो पर्यावरण का संकट गहरा जाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जितनी अधिक आबादी होगी उतना अधिक पानी, भोजन और ऊर्जा भूमि की आवश्यकता होगी और यदि जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की उपलब्धता का सही आंकलन नहीं किया गया तो पर्यावरणीय संकट बढ़ सकता है, जैसा कि आपने बताया था। तो श्रोता साथियों, डेमोग्राफी हमें ये समझने में मदद करती है कि संसाधनों का संतुलित उपयोग कैसे किया जाए।
0: जी हाँ, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सच्चा स्वराज और डेमोग्राफी का एक अलग ही संबंध है। कह सकते हैं जागृति जी, इस स्वराज केवल शासन बदलने का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज वो व्यवस्था है जहाँ हर व्यक्ति की जरूरत को समझा जाए और उसके अनुसार योजनाएं बनाई जाए। जब सरकार और समाज जनता की वास्तविक स्थिति को समझकर निर्णय लेती है तब लोकतंत्र मजबूत होता है।
1: बिल्कुल।
0: और विकास सब तक पहुंचता है। इसलिए कहा गया है जागृति जी कि जनसंख्या की समझ ही सच्चे स्वराज की आधारशिला है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि महात्मा गांधी जी का सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था। उनका सपना था ऐसा समाज जहाँ हर व्यक्ति की आवश्यकताओं और अधिकारों का सम्मान हो। लेकिन ये तभी संभव है जब हम समाज की वास्तविक स्थिति को समझे।
0: बिल्कुल।
1: डेमोग्राफी हमें लोगों की जरूरतों और चुनौतियों की सही तस्वीर दिखाती है। जब नीतियां जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बनेंगी तभी सच्चे स्वराज की स्थापना होगी।
0: जी हाँ, इसी के साथ कह सकते हैं जागृति जी कि समस्याएं कभी भी अचानक पैदा नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: वे धीरे धीरे बनती है और उसका समाधान भी तभी मिलता है जब हम उसकी जड़ों को समझते हैं। डेमोग्राफी हमें उन जड़ों तक पहुँचाने का रास्ता दिखाती है। याद रखिए श्रोता साथियों कि सिर्फ जनसंख्या गिनना डेमोग्राफी नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, उनकी जरूरतों और उनके भविष्य को समझना ही असली डेमोग्राफी है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जागृति जी कह सकते हैं कि हम लोगों को समझ लेंगे तो समस्याओं को भी समझ लेंगे। जब समस्याएं समझ में आ जाएंगी तो उनके समाधान भी आसान हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आंकड़ों को केवल संख्या मत समझिए, हर संख्या के पीछे एक इंसान और एक कहानी होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, किसी भी समस्या का समाधान केवल इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सही समझ से होता है और सही समझ तब आती है जब हम लोगों की वास्तविक स्थिति को जानते हैं।
0: बिल्कुल।
1: डेमोग्राफी हमें सिखाती है कि विकास केवल इमारतों और सड़कों का नाम नहीं है। विकास का अर्थ है लोगों की जरूरतों को समझना और उनके अनुरूप योजना बनाना।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम जनसंख्या की संरचना, उसकी चुनौतियां और उसकी संभावनाओं को समझ ले तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और पर्यावरण जैसी बहुत सारी समस्याओं को हम बेहतर समाधान खोज सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जो समाज अपने लोगों को समझ लेता है वो अपने भविष्य को भी संवार लेता है। जन जन की पहचान से विकास होगा, सम्मान होगा। डेमोग्राफी को जो आज समझ जाएगा वही सच्चा स्वराज कहलाएगा।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ श्रोता साथियों से कार्यक्रम में हम यही कहना चाहेंगे कि आज हमने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी बात को जाना है कि डेमोग्राफी क्या होता है और किस तरीके से अगर हमें जानकारी का अभाव रहता है तो समस्याएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। अगर हमें समस्याओं को समाधान के तौर पर लेना है तो उसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से लेनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम केवल समस्याओं की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि उन जड़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे। हम आंकड़ों को केवल संख्या नहीं मानेंगे बल्कि उनके पीछे छिपे जीवन, संघर्ष, सपनों और संभावनाओं को पहचानेंगे, क्योंकि हर संख्या के पीछे एक इंसान है और हर इंसान के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। जिस समाज को अपनी जनसंख्या की सही समझ होती है, वही समाज अपने भविष्य को सही दिशा दे पाता है।
1: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में बातें ढेर सारी हो गई हैं, तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम को लेकर हाजिर हो चुके हैं हम एक नए विषय के साथ में। आज हम कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा बात करेंगे एक ऐसे खाद्य पदार्थ की जो सस्ता भी है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता।
0: जी हाँ,
1: हम बात कर रहे हैं अंकुरित अनाज की। श्रोता साथियों, आज के समय में लोग स्वास्थ्य सुधार के लिए महंगे अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं, दवाइयों की ओर भागते हैं।
0: जी हाँ,
1: जबकि हमारे घर की रसोई में ही कई ऐसे खजाने मौजूद हैं मनीषा, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज जानेंगे अंकुरित अनाज क्या है, इसे खाने के क्या फायदे हैं और इन्हें हम अपने भोजन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अंकुरित अनाज के फायदे को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में लोग अनेक प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन समस्याओं से बचने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, प्रकृति ने हमें ऐसे अनेक खाद्य पदार्थ प्रदान किए हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं में से एक है श्रोता साथियों अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज न केवल पौष्टिकता से भरपूर होता है साथियों, बल्कि शरीर की ऊर्जा, रोगों से लड़ने की क्षमता और साथ ही बेहतर पाचन शक्ति भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम को ये समझना है कि आखिरकार अंकुरित अनाज है क्या।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जब किसी अनाज, दाल या बीज को कुछ घंटों तक पानी में भिगो कर रखा जाता है, फिर कपड़े में बांध कर या किसी बर्तन में रखा जाता है, तो उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसी प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। मूंग, चना, मेथी, सोयाबीन, गेहूं और कई अन्य अनाजों को अंकुरित किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि अंकुरण के दौरान अनाज के अंदर कई जैविक परिवर्तन होते हैं, इससे उनमें मौजूद पोषक तत्व अधिक सक्रिय और लाभकारी हो जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: अंकुरित अनाज में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है।
0: जी हाँ,
1: यही कारण है कि उन्हें जीवित भोजन भी कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि अंकुरित अनाज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें उपस्थित विटामिन सी, विटामिन ई और विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट शरीर को संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, नियमित रूप से अंकुरित अनाज खाने वाले लोगों को सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा है वो भी कम होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आज कई लोग दिन भर थकान महसूस करते हैं, इसका एक कारण शरीर को पर्याप्त तो पोषण न मिलना भी है। अंकुरित अनाज शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन्हें खाने से शरीर जो है वो लंबे समय तक सक्रिय रहता है और कमजोरी कम महसूस होती है।
0: जी हाँ,
1: जो लोग खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, विद्यार्थी हैं या घर का काम संभालने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए अंकुरित अनाज बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के समय में कब्ज, गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं वो भी सामान्य हो गई हैं। अंकुरित अनाजों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है साथियों, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: फाइबर भोजन को आसानी से पचाने में सहायता करता है और साथ ही हमारे आंतों की सफाई भी करता है। इससे कब्ज जैसी समस्याएं होती है उनसे भी राहत मिलती है और साथ ही श्रोता साथियों, पाचन तंत्र हमारा है वो स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली की जरूरत होती है।
0: जी हाँ,
1: अंकुरित अनाज में विटामिन सी, विटामिन ई, कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: जो शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। मौसम बदलने पर होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से बचाव में भी ये मददगार साबित होते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से अंकुरित अनाज के फायदों को लेकर बातें चल ही रही हैं और कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि अंकुरित अनाज क्या है, अंकुरित अनाज में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में किस प्रकार सहायक है, और साथ ही हमने बात की कि पाचन तंत्र को यह स्वस्थ कैसे रखता है। तो ये बातें आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि बच्चों के लिए भी अंकुरित अनाज लाभकारी होता है।
1: जी हाँ।
0: बढ़ते बच्चों को अच्छे पोषण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को नियमित रूप से अंकुरित मूंग, चना या अन्य अंकुरित अनाज दिए जाए तो उनके शरीर और मस्तिष्क का विकास बेहतर होता है।
1: जी हाँ।
0: इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, वे अधिक सक्रिय रहते हैं और पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, महिलाओं को अक्सर खून की कमी, कमजोरी और थकान जैसे समस्या का सामना करना पड़ता है। अंकुरित अनाज में मनीषा आयरन, कैल्शियम और कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: जो महिलाओं के स्वास्थ्य को, श्रोता साथियों, बेहतर बनाने में मदद करते हैं। गर्भवती महिलाओं, किशोरियों के लिए भी संतुलित मात्रा में अंकुरित अनाज लाभकारी हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मोटापा है वो वर्तमान की एक गंभीर समस्या बन चुका है। अंकुरित अनाज वजन को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है साथियों, क्योंकि इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम तथा फाइबर अधिक होता है। हम देखते हैं कि फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती है और

0: आवश्यक खाने की आदत है वो भी कम हो जाती है। इस प्रकार श्रोता साथियों, हमारा वजन ही वो नियंत्रित रहता है।
1: बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि अंकुरित अनाज में मौजूद पोषक तत्व हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसमें वसा की मात्रा कम और फाइबर अधिक होता है, जैसा कि आपने बताया, जिससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। स्वस्थ हृदय का मतलब है बेहतर जीवन और लंबी आयु।
0: जी हाँ।
1: साथियों, अंकुरित अनाज तैयार करना बहुत आसान है। सबसे पहले मूंग या चने को अच्छी तरह धोकर रात भर पानी में हमें भिगो देना है। सुबह पानी निकाल कर इन्हें साफ कपड़े में बांध दें। एक या दो दिन बाद इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे।
0: हाँ।
1: खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें नींबू, टमाटर, प्याज, हरा धनिया मिलाकर स्वादिष्ट सलाद भी बनाया जा सकता है। श्रोता साथियों, अंकुरित अनाज बहुत लाभकारी है, लेकिन इनकी साफ सफाई का ध्यान बहुत रखना होता है।
0: जी हाँ।
1: यदि अनाज खराब हो जाए, उसमें दुर्गंध आने लगे, तो उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में खाने के बजाय संतुलित मात्रा में ही सेवन करना बेहतर होता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यह हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। अंकुरित अनाजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बढ़ते बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अंकुरित अनाज विशेष रूप से लाभकारी होता है।
1: जी जी।
0: साथ ही हम देखते हैं कि स्वस्थ त्वचा और मजबूत बाल अच्छे स्वास्थ्य के संकेत होते हैं। अंकुरित अनाजों में पाए जाने वाले विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसके नियमित सेवन से श्रोता साथियों, त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है और बालों की जड़ें हैं वो भी मजबूत होती हैं।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि सही खानपान से बनता है।
0: जी हाँ।
1: अंकुरित अनाज हमें यह सिखाते हैं कि पोषण पाने के लिए हमेशा महंगे विकल्पों की जरूरत नहीं होती। हमारे घर की साधारण दालें और अनाज भी असाधारण लाभ दे सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, यदि हर परिवार अपनी दैनिक थाली में अंकुरित अनाज को थोड़ा थोड़ा स्थान दे दे, तो कुपोषण, कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: यह केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है मनीषा, बल्कि स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाया गया एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हम सभी को ये मानना होगा कि हम स्वयं भी अंकुरित अनाज खाएंगे और अपने परिवार, बच्चों और समुदाय को भी इसके लाभों के बारे में जागरूक करेंगे। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज की शुरुआत हमारी थाली से ही होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि अंकुरित अनाज प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक सस्ता और सरल और अत्यंत पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पाचन सुधारने में और वजन नियंत्रण में भी ये सहायक होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, आज जब लोग विभिन्न जीवन शैली संबंधित रोगों से जूझ रहे हैं, तब अंकुरित अनाजों को दैनिक भोजन बनाने का हिस्सा हमारे लिए एक सरल और प्रभावी उपाय हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम नियमित रूप से अंकुरित अनाजों का सेवन करें और संतुलित जीवन शैली को अपनाएं, तो स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग मुक्त जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत हो गई है और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी बिल्कुल।
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
5: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। एक ऐसा मंच साथियों जहां हम सपनों को हकीकत में बदलने की बात करते हैं। लेकर हाजिर हो चुकी हूं एक नए विषय के साथ में आज के इस कार्यक्रम को। साथियों, आज का हमारा विषय है छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। साथियों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये सच भी है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे बड़े भविष्य की नींव बनती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। जानेंगे दोस्तों कि छोटी आदतें क्या होती है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव कर सकती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, और मनोरंजन के बिना तो ये कार्यक्रम भी अधूरा है। साथियों, तो आइए सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय बता दिया है कि आज हम बात कर रहे हैं छोटी आदतें बड़ा बदलाव लेकर आती है, इस विषय को लेकर। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा मौका, बड़ा फैसला या बड़ा जोखिम। लेकिन साथियों, सच तो ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से ही आते हैं। छोटी आदतें क्या है? जैसे कि रोज 10 मिनट पढ़ना, समय पर उठना, अपने लक्ष्य लिखना, किसी की मदद करना और रोज खुद से एक सकारात्मक बात कहना। श्रोता साथियों, दोस्तों ये सब चीजें छोटी लग सकती हैं, पर जब ये आदतें बन जाती हैं तो यही आपकी पहचान भी बन जाती है। हम देखते हैं दोस्तों कि यही होती है छोटी आदतें। बात करें अगर आदतों की ताकत की, तो श्रोता साथियों, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम रोज कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि हम रोज जो करते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर आप दोस्तों रोज थोड़ी मेहनत किसी चीज को लेकर करते हैं तो एक दिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, एक छात्र है जो रोज 20 मिनट पढ़ता है साथियों, और दूसरा छात्र सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ता है, तो आपके हिसाब से आगे कौन जाएगा? स्पष्ट है श्रोता साथियों कि वो छात्र जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि छोटी आदतें बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, क्योंकि एक छात्र ऐसा है जो रोज रोज नहीं पढ़ता, लेकिन एक छात्र ऐसा है जो रोज रोज पढ़ता है। तो ऐसे में वर्तमान में हमारी समस्या यही है दोस्तों कि हम जब किसी काम को कर रहे होते हैं तो पहली बार में हम उस काम को एकाग्रता के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी आदत में नहीं है। लेकिन वही दोस्तों, अगर हम उसे एकाग्रता के साथ करेंगे, एक बार हमने किया, दूसरी बार हमने किया, तीसरे बार में वो हमारी आदत बन जाएगी। क्योंकि हम जो काम रोज रोज करते हैं ना श्रोता साथियों, तो एक ना एक दिन वो हमारी आदत बन जाती है, और यही छोटी आदतें आगे जाकर बड़े बदलाव लाती हैं श्रोता साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी चीजें जो होती हैं वो हमें डराती हैं, लेकिन जो छोटी आदतें और जो छोटी चीजें होती हैं वो हमें सहज बनाती है श्रोता साथियों। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना है, तो दिमाग हमारा डर जाएगा, यानी कि पढ़ने से पहले ही हमारे अंदर चिंता और भय घर कर जाएगा, और हम ये सोचने लगेंगे कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा कैसे, क्योंकि मैंने उसे कह तो दिया कि मैं 5 घंटे पढ़ लूंगा। लेकिन जब वो चीज आपकी आदत में ही नहीं है तो उस काम को आप करेंगे कैसे श्रोता साथियों? लेकिन अगर आप खुद से ये कहें कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, तो आपका दिमाग मान जाएगा श्रोता साथियों, और फिर श्रोता साथियों यही 15 मिनट रोज रोज के 1 घंटा बन जाएंगे। कह सकते हैं कि रोज जब हम धीरे धीरे 15 मिनट पढ़ेंगे श्रोता साथियों, तो कह सकते हैं कि वो 15-15 कब 30 हो जाएंगे, और कब वो 30-30-60 हो जाएंगे श्रोता साथियों, हमें पता ही नहीं चलेगा, और फिर वो हमारी आदत में रह जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे और हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, और छोटी आदतें किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव लेकर आती हैं, उस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं साथियों। तो आगे भी ये बातचीत हमारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, क्योंकि दोस्तों असली उड़ान तो अभी बाकी है। तो आगे और भी बातें होंगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, छोटी आदतें बड़े बदलाव किस प्रकार से लाती है, इस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और गीत से पहले दो उदाहरणों के माध्यम से हम समझ पाए थे श्रोता साथियों कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे हमारे प्रयास है वो जब हमारी जीवन शैली में हमारी आदत का रूप ले लेते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा संवर जाता है। जैसा कि हमने एक छात्रा का उदाहरण भी लिया था। अब यही अगर बात करें श्रोता साथियों कि जीवन को बदलने के लिए क्या ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनानी है। जैसे कि दोस्तों, सुबह जल्दी उठने की आदत। दोस्तों, सुबह का समय जो होता है वो काफी शांत और सकारात्मक होता है। ऐसे में अगर आप किसी काम को करते हैं सुबह के समय में तो वो काम कह सकते हैं कि सफल भी होता है। इसलिए हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं श्रोता साथियों। इसी के बाद जो दूसरी आदत है वो हम अपना सकते हैं, कुछ नया सीखने की। यानी कि दोस्तों, आपको रोज कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वो एक शब्द हो सकता है, एक विचार हो सकता है या फिर एक कौशल हो सकता है। दोस्तों, इसी के आगे बात करूं लक्ष्य की, तो लक्ष्य को तो श्रोता साथियों हम सभी ही पाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको अपने जो गोल्स हैं उन्हें लिख कर रखना है। दोस्तों, लिखने से क्या होगा कि वो जल्दी पूरे होंगे, क्योंकि हम उस चीज को बार बार देखेंगे, हमें याद रहेगा कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। तो कह सकते हैं कि हम उसके लिए मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद श्रोता साथियों एक ना एक दिन हम सफल जरूर होंगे और हम अपनी मंजिल को पार कर ही लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, रोज आपको तीन चीजें लिखनी चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें श्रोता साथियों बनाया है और हमारे अंदर जो भी गुण है वो ईश्वर से ही हमें प्राप्त किए गए हैं। तो हमें सबसे पहले तो दोस्तों ईश्वर का आभारी होना चाहिए। इसी के साथ आप खुद से ये कहें कि आप हर चीज में परफेक्ट हैं और आप हर काम को करने के लिए सक्षम हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कुछ ऐसी सकारात्मक आदतें होती हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। और जब पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं दोस्तों, तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाऊं, तो एक लड़का था जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने फैसला किया कि वो रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा। साथियों, शुरुआत में उसे काफी मुश्किल लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मिनट भी कोई मुश्किल है क्या? लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, तो वो 10 मिनट भी हमें 10 घंटे के बराबर लगते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, वह रोज थोड़ा थोड़ा 10 मिनट पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा दोस्तों। फिर वही 6 महीने बाद वही लड़का क्लास में टॉप करता है। दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या देखा कि उस बच्चे का जीवन बदल गया सिर्फ एक छोटी सी आदत से। सिर्फ एक 10 मिनट पढ़ने की आदत से श्रोता साथियों उस बच्चे ने क्लास में टॉप किया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कुछ छोटी मोटी आदतें होती हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं, उन्हें अपने जीवन में हमें जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, आदतें बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है श्रोता साथियों। जैसे कि आप छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। रोज एक ही समय पर दोस्तों आपको काम करने की आवश्यकता है, और अगर आप जब उस काम को पूरा कर ले तो आप खुद को इनाम भी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है दोस्तों, जिससे आप उस चीज को करने में प्रोत्साहित होंगे। गलती होने पर खुद को माफ भी कर ले, यानी कि पश्चाताप न करें, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि हर इंसान छोटी छोटी आदतें जब अपनाने लगता है तो एक समाज बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हम ये छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें देखकर भी इस चीज के बारे में सीख लेते हैं। हम देखेंगे कि जब हम ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे श्रोता साथियों, तो सिर्फ हम ही नहीं पूरा समाज बदल सकता है। जैसे कि कूड़ा कचरा न फैलाना, पानी बचाना, दूसरों का सम्मान करना, ये कुछ ऐसी छोटी चीजें होती हैं श्रोता साथियों, लेकिन इसके बदलाव जो है वो काफी बड़े होते हैं। तो ऐसे में आपसे कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज से ही श्रोता साथियों एक छोटी आदत को आप चुनिए और खुद से ये वादा कीजिए कि आप इस आदत को रोज निभाएंगे। क्योंकि दोस्तों, छोटी आदतें ही बड़े सपनों की उड़ान बनती हैं। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं, और मैं देख रही हूँ कि अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में।
तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी और आप भी अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल होंगे। श्रोता साथियों, तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे एक नए विषय के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

जी ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।